सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 4 जून वर्ष 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। आइए अब आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी।

0: इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के दो दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवगेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जिस हृदय में राष्ट्र के लिए समर्पण हो वहां अहंकार नहीं केवल सेवा का भाव होता है। निस्वार्थ देशभक्ति वह तपस्या है जिसमें व्यक्ति अपने सुख से पहले देश के हित को चुनता है।

मनुष्य का जीवन अनेक इच्छाओं, अपेक्षाओं और संघर्षों से भरा हुआ होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता की खोज करता है। इस खोज में वह कभी संसार की ओर भागता है तो कभी ईश्वर की शरण में जाता है।

संसार में अधिकांश लोग ईश्वर को तब याद करते हैं जब वे दुख में होते हैं या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं। किंतु जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, वही वास्तविक भक्त कहलाता है।

केवल मंदिरों में दीप जलाने या पूजा करने तक सीमित नहीं होती। सच्ची भक्ति मन की पवित्रता और कर्मों की श्रेष्ठता में दिखाई देती है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर दया, करुणा, सत्य और सेवा का भाव है, तो वही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है।

0: अभी सुन रहे थे आप भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख है पूजा शर्मा का और वाचक स्वर है मनीष कुमार सोनी के।
1: छोटे प्रयास बड़ी सफलता देते हैं। जीवन में छोटे प्रयास बड़ी सफलताओं की सीढ़ी बन जाते हैं, जो सुनने में हमें छोटी भले ही लगती है, लेकिन जीवन बदलने की ताकत रखती है। छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता की नींव होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता अचानक मिलती है, कोई बड़ा मौका मिलेगा, कोई चमत्कार होगा और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच ये है कि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज उठाए गए छोटे छोटे कदमों से मिलती है। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या वो सीधे दौड़ने लगता है? नहीं, वो पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर दो कदम चलता है, फिर गिरता है। उसके वो छोटे छोटे प्रयास ही उसे एक दिन बिना रुके चलना सिखा ही देते हैं। इसी तरह जीवन में भी हर छोटी कोशिश मायने रखती है। यदि आप रोज सिर्फ 20 मिनट तक पढ़ते हैं तो एक साल में आप हजारों पन्ने पढ़ चुके होंगे। अगर आप रोज 10 मिनट व्यायाम करते हैं तो कुछ ही महीनों में आपका शरीर और आत्मविश्वास दोनों बदल जाएंगे। अगर आप रोज एक नई चीज सीखते हैं तो कुछ ही सालों में आप साधारण से असाधारण बन सकते हैं। समस्या ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, समस्या ये है कि हम छोटे प्रयासों को छोटा समझकर उन्हें शुरू ही नहीं करते। हमें लगता है इतना करने से क्या होगा, लेकिन याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। एक किसान बीज बोते समय ये नहीं सोचता कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा बीज है। वो जानता है कि इसी छोटे बीज में पूरा पेड़, पूरी फसल छिपी है। बस

0: जरूरत है धैर्य, देखभाल और निरंतर प्रयास की। हम भी अपने सपनों के बीज रोजाना बो सकते हैं। थोड़ी मेहनत, थोड़ा अनुशासन और थोड़ा धैर्य रखना जरूरी होगा। दुनिया के हर सफल व्यक्ति की कहानी उठाकर देख लीजिए। किसी ने एक दिन में ही सफलता नहीं पाई, उन्होंने रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। छोटे प्रयास हमें तीन बड़ी चीजें सिखा ही देते हैं, पहला अनुशासन, दूसरा धैर्य और तीसरा आत्मविश्वास। जब हम रोज छोटी जीत हासिल करते हैं तो हमें अपने ऊपर भरोसा होने लगता है और यही भरोसा आगे चलकर बड़ी जीत में बदलता है। बड़ी सफलता का रास्ता कभी भी बड़ी शुरुआत से नहीं बल्कि छोटी लेकिन लगातार कोशिशों से बनता है। तो आज से ये मत सोचिए कि मैं बड़ा क्या कर सकता हूँ, ये सोचिए मैं आज छोटा सा अच्छा कदम कौन सा उठा सकता हूँ, क्योंकि वही छोटा कदम कल आपकी बड़ी मंजिल की शुरुआत बनेगा। हम सभी को अपने जीवन में रोज छोटे प्रयास करना चाहिए, जिससे एक दिन बड़ी सफलता हमारे समक्ष होगी। इसलिए छोटे प्रयासों पर निरंतर कार्य करते रहें। ईश्वर हमारे प्रयास को बड़ी सफलता में एक दिन जरूर परिवर्तित कर देगा।
1: अभी सुन रहे थे आप आज का चिंतन। आलेख था पूजा शर्मा का और वाचक स्वर थे मनीष कुमार सोनी के। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इंदौर। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं खेती की बातें। आज जानिए वर्षा पूर्व तालाबों की तैयारी के विषय में।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज अपन खेती की बात नमा बात करेंगा कि भाई अपन अपना जो तालाब उनख कसा कई तर करा इन्हीं बरसात में अपन उनख लबालब कसा बना एका लेना छे तो अपना का कुछ तैयारी ना पहले से करना पड़ेगा। अभी उनाड़ा की बखत चली रही तो इन्हीं बखत में अगर अपना जो तालाब छे उनख साफ सुथरा करी लेवा, गहरा करी लेवा और व्यवस्थित कर लेवा, उनकी मेड़ न बांधी देवा तो ओम पानी को रुकाव अच्छो ही जाएगा। एका लेना सबसे पहले तो ये चाहिए कि अभी जो जितो भी हवा आंधी सी कचरो उड़ी ना आई रोज ओखा छे तो अपन पहले साफ कर लेवा, ओखा ओको अंदर को जो मलबो छे वो निकाली कर एक तरफ कर लेवा। ओका बाद में जो मेड़ बनेल छे ओखा अच्छी मजबूत कर लेवा, जेका सी छे तो जमा भी पानी इकट्ठो होएगा तो वो बाहर नहीं बहेगा। एका लेना मेड़ का पहले पक्की कर लेवा ताकि पानियों का अंदर इकट्ठो रहे। फिर ये बात आवेगा कि उमा छे तो पानी किस तरह से उना तालाब का अंदर आवनु चाहिए तो एका लेना हम ये तैयारी करा कि भाई जसो आसपास को जो पानी इकट्ठो कहीं छे तो ओका बीच में छे तो पत्थर नाखी देवा है नी, या फिर जाड़ा ही न लगे देवा जेका से साफ सुथरो पानी उना तालाब में इकट्ठो होतो रहे। इस तरह से ओको ढलान बने देवा कि बाहर को जो पानी छे वो तालाब का अंदर इकट्ठो हुई जाए। अब इना एम छे तो कचरो भी नहीं आवेगा, न पत्थर न सी न जाड़ाई न सी पानी गुजरेगा तो वो साफ पानी रहेगा और हमारा जो तालाब छे वो का अंदर साफ सुथरो पानी इकट्ठो हुई जाएगा। असच पानी की निकासी का लेना जहाँ हमको पानी की जरूरत हुए तम छे तो हमको पानी कसो का ही लेना चाहिए भाई। पानी एक छे तो निकालना का लेना अपनी जो मेड़ न छे उनका पहले तो मजबूत रहे और वो टूटे नहीं एक कारण उनका पहले से तैयार करी लेवा। आम छे तो जो तलाटी में छे तो गाद जमी गई या कचरो जमा छे ओखा छे तो पहले हटाई करना तलहटी में पानी इकट्ठो रहे एका लेना ओखा अच्छी माटी नाखी कर या थोड़ा कंकड़ पत्थर नाखी कर कूटाई करी लेवा जेका सी नीचे के जो तालाब की तली छे वो छे तो पक्की हुई जाएगा। फिर ओका ऊपर छे तो रेत गीली बिछाई देवा जेका सी ज़्यादा पानी सूखी सक और छे तो वो तालाब हमेशा भरेल रहे। नहीं तो कहीं होएगा जमा भी पानी इकट्ठो होएगा तो वो रिसी रिसी करना पूरी जमीन का अंदर चली जाएगा और तालाब खाली भी जाएगा। तो तालाब अपनो भरे ले एका लेना छे तो अपना का मिट्टी की कुटाई कर देनु चाहिए कंकड़ पत्थर नाखी करना कुटाई कर।

0: देवा जेका सी छे तो वरसाद को पानी ओका अंदर रुकेल रहे ठहरेल रहे जो कि अपनी खेती में ना अपनी खेत की माटी का उपजाऊ बनाना के लेना भी जरूरी छे। अब अपन देखांच कि भाई जो नीचे तलहटी छे ओमा अगर हम ताला तलाव का सूखो करी का ना नीचे जो जमीन छे ओकी ओमा प्रति एकड़ का हिसाब से 100 किलो अपनो जो खेती को चूना आवज ओखा समान रूप से सबदूर बिछाई देवा। एक शिकाई होएगा जो पानी को या माटी को अपनो पीएच मान छे वो बराबर रहेगा संतुलित रहेगा जेका से जब भी कोई हानिकारक बैक्टीरिया या कीटाणु वगैरह उमा छे तो पनपी नहीं पाएगा। एक ऐसी अपनो ये तड़ाव को पानी अपन ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकेंगा। अब भाई पानी अपन इस तरह से रोकेंगा तो जो अपनी खेती बाड़ी छे उना एम छे तो अपन इना पानी को उपयोग कर सकेंगा। भाई का अलावा भी हमारा भोसा किसान भाई बहन मछली पालन भी करे तो अपना जलीय जीव जो पाड़ज उनका लेना भी छे तो अपना का इस तरह का जो तलाव छे उनका तैयार कर लेना चाहिए न उनमें छे तो चूनो नाखी का ना ओखा 2-3 दिन बाद में उमा फिर पानी आवा तो ज्यादा अच्छो रहेगा। तो मछली पालन भी इस तरह से अपन अच्छो कर सका। आज हमारा किसान भाई बहन से ये कहनू छे।
1: अभी सुन रहे थे आप खेती की बातें जिसमें आज हमने जाना वर्षा पूर्व तालाबों की तैयारी के बारे में और जानकारी दे रही थी बिंदु। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 यानी कि आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है घुटने कूल्हे और कंधों का दर्द और प्रत्यारोपण सर्जरी के द्वारा इनका इलाज। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं एवं प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर सचिन छाबड़ा हड्डी रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 यानी कि आज समय रहेगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731 यानी 0731। तो फोन करना ना भूले। गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 यानी कि आज समय रहेगा सुबह 10:32 से 11:02 तक और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz या मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सूचना समाप्त हुई और अब समय है श्री रामचरित मानस गान के आज के प्रसंग का जिसे आप सुनेंगे उत्तरा केलकर के गायन स्वर में।

श्री रामचरित मानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु सौ सौ बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहां राम

के रूप में परम ब्रह्म और कहां पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर। परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।

उत्तरा केलकर के गायन स्वर में अभी आप सुन रहे थे आज का श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी सुबह 7:20 पर साहित्य के कार्यक्रम में आप सुनिए अर्पित शर्मा का कविता पाठ और गजलें, और उसके तुरंत बाद 7:35 से सुनिए सुनहरे पल में सदाबहार फिल्म संगीत। सुबह 8:30 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम का, और आज आपको सुनवाएंगे हम कार्यक्रम वतन का राग। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए प्रभुलाल मालवीय और साथियों के गाए कुछ मालवीय लोकगीत सुबह 9:00 से, और सुबह 9:15 से सुगम संगीत में आज सुनिए ए हरिहरन की गाई कुछ गजलें। कैलाश पवार और साथियों का गायन सुनेंगे आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में राग होगा तोड़ी, सुबह 9:30 इस कार्यक्रम का समय होगा, और सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी। सुबह 10:05 से सुनिए फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, जिसमें आप सुन सकेंगे आपके फरमाइशी फिल्मी गीत और कर सकेंगे हमसे बात। साथ ही सुबह 11:00 से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। श्रोताओं, दोपहर 12:00 से लीजिएगा फिल्म संगीत का आनंद, और दोपहर 12:30 सुनिएगा कार्यक्रम संग्रहालय।

से। हमारे महिला श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम महिला कार्यक्रम में दोपहर 1 बजे आप सुने स्वाधार ग्रह योजना के विषय में जानकारी और प्रीति दुबे की कहानी आधुनिक भारत में डिजिटल नारी। रूपलावण्य इस क्रम में आज जानिए गर्मियों में प्राकृतिक सौंदर्य और ताजगी बनाए रखने के व्यवहारिक टिप्स। साथ ही फैमिली फिटनेस क्रम में आज सुने महिलाओं के स्वास्थ्य में योग की भूमिका और आपकी सुरक्षा आपके हाथ। इस क्रम में आज सुने यात्रा और सुरक्षा के विषय में। दोपहर की सभा में लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत होगा 1:30 से और सुगम संगीत 1:45 से। हमारे दोपहर कालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप 2:00 और चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 2:30 से। शाम 5 बजे होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं शाम की सभा में फिल्म संगीत लेकर आएंगे हम 5:45 से और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे आप शाम 6 बजे। शाम 6:30 सुनना ना भूलिएगा सुगम संगीत में ए हरिहरन की गाई कुछ और गजलें और लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रभुलाल मालवीय और साथियों के गाए कुछ और मालवीय लोकगीत शाम 6:45 से। खेती गृहस्थी कार्यक्रम का समय होगा शाम 7:20। रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। चित्र गीत आप सुनेंगे रात 9:15 पर और पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन होगा रात 9:30 और रात 10 बजे सुनिए प्रादेशिक लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही देर में सुनिए संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: संबद्धानां अशेषेषु पक्षेषु मन्थनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार निवेश, स्वास्थ्य सेवा, परिवहनम्, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणाम् अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज़वर्यः भारतदेशस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् कृत्स्नेहि विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायां अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्रीशाहः पुष्पवन्त पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे एकविंशतिः जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षि विभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमन विभागस्य अष्टभिः वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः चत्वारिंशदधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्त परिवारान् प्रति गहन संवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी

0: माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। श्रोताओं, अब एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 यानी कि आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का आज विषय है घुटने, कूल्हे और कंधों का दर्द और प्रत्यारोपण सर्जरी के द्वारा इनका इलाज। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं एवं प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर सचिन छाबड़ा हड्डी रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारे ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल यानी FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। साथ ही इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 यानी कि आज समय रहेगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फोन करना ना भूले। गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 यानी कि आज समय है सुबह 10:32 से 11 बजे तक। और इस कार्यक्रम को सुने विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सूचना समाप्त हुई।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
5: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
4: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
5: अरे काहे का मजा।
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
4: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय प्रवास पर उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में भी शीघ्र लागू होगी समान नागरिक संहिता, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश के हर जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए फीडर सेंटर स्थापित होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत

0: शांत मजूमदार पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश में एक निशान, एक विधान और एक कानून लागू हो, इस राष्ट्रीय भावना में कुछ भी गलत नहीं है। समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही मध्य प्रदेश भी देश का यूसीसी लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। इसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय की रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनजाति समुदाय को यूसीसी से पृथक रखा जाएगा, उन्हें अपने पारंपरिक रीति रिवाज मानने की स्वतंत्रता होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल नई दिल्ली में आयोजित एक कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की उन योजनाओं की जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आर्थिक मामलों की समिति ने मध्य प्रदेश में 4,415 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण सौगात से प्रदेश की जनजातीय बहुल जिले बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी के समग्र विकास को तेज गति मिलेगी। साथ ही हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस परियोजना में खरगोन जिले में एक ग्रीनफील्ड बाईपास भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा,
2: राजमार्ग की जो सौगात मिली है, मैं उसके लिए उनका आभार भी मानता हूँ और बधाई देता हूँ। बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये चारों जिले हमारे करीब करीब महाराष्ट्र से लगे हुए भी हैं और इनके माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास का परिपथ बनता है। ऐसे में 4,415 करोड़ से लगभग 2 जो सड़कें की सौगात मिली, 2 परियोजनाएं, ये भविष्य की दृष्टि से एक अलग प्रकार से हमको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी।
0: उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल की है। वे अब राजधानी भोपाल में नियमित रूप से ईवी कार से ही यात्रा करेंगे। ये ईवी मुख्यमंत्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरने, फीचर्स की विधिवत जांच और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का बारीकी से पालन करने के बाद मुख्यमंत्री के लघु कार किट में कल से शामिल कर ली गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 5 जून से शुरू हो रहे विशेष जनकल्याण अभियान के तहत प्रदेश भर में वृहद पौधरोपण के निर्देश दिए हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति मिलेगी। श्री सारंग कल भोपाल के टीटी नगर स्थित मेजर ध्यानचंद हॉल में टैलेंट सर्च अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों और खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अगले 24 घंटों में भी 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिजली गिरने की भी आशंका है। शिवपुरी में कोलारस की ग्राम पंचायत गोरा टीला में रात्रि चौपाल लगाकर प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। खंडवा में आज जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। आगरमालवा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे स्वच्छ गांव मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत मिशन लाइफ के अंतर्गत पेड़ पौधों की साफ सफाई संरक्षण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मंदसौर जिले के आदर्श गांव बालागुड़ा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में कलेक्टर अदिति गर्ग ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। झाबुआ में कल विश्व क्लब फुट दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडौरी में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गुना के कुंभराज क्षेत्र के ग्राम बड़ौद में कल कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलान बतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। साहित्य की कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अर्पित शर्मा का कविता पाठ और गजलें।

मिली मुश्किलों से आज़ादी, मगर न इसकी कद्र हमें पड़ आदत आराम की गई, नहीं देश की फिक्र हमें। देश की चिंता ना हम करते, हम भूले जिम्मेदारी, भोर करेगा कौन यहाँ अब है निंद्रा सबको प्यारी। मरने मिटने को माटी पे क्यों तलवार नहीं लेते, राणा लक्ष्मी और शिवाजी क्यों उतार नहीं लेते। पावन धुन जब आज़ादी की बच्चा बच्चा गाता था, बंदूक खेत में भगत सिंह अपने खूब उगाता था। सूख रहा ये चमन देश का कौन भला अब सींचेगा, भारत माँ के आंसू को अब कौन बताओ पूछेगा। भ्रष्टाचार व आरक्षण की कौन बेड़ियाँ तोड़ेगा, सर्वपरि भारत अपना हो कौन भला अब सोचेगा। देश प्रेम के एक काम को रोज हमें बस चुनना है, भारत विकसित को अपना बस सपना बनकर बुनना है। भारत विकसित हो अपना बस सपना मिलकर बुनना है। एक कविता और देखें आप, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभियान शुरू करा है एक पेड़ माँ के नाम, उसके संदर्भ में आप कविता देखें एक पेड़ माँ के नाम पे। इस धरती की सुंदरता को, पावन जल की निर्मलता को, मिलजुल कर और बढ़ाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। इस धरती की सुंदरता को, पावन जल की निर्मलता को, मिलजुल कर और बढ़ाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। शुद्ध पवन के ठंडे झोंके चहू और बस कोयल कूके, फिर मन ही मन हर्षाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। नई किरण और नया सवेरा, घर आंगन खुशियों का बसेरा, हर दिन हर पल पाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। अंबर में काले बदरा छाएंगे, जमकर के अमृत बरसाएंगे, आओ खेतों में सोना उगाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। फिर कभी ना सावन आएगा, हर कोई खिलता बचपन पाएगा, आओ पेड़ों संग त्योहार मनाए हम, आओ पेड़ लगाए हम, आओ पेड़ लगाए हम। अब एक दो गजल आप सुन ले, देखे के दूर करने को ये तन्हाई कहाँ से आई, दूर करने को ये तन्हाई कहाँ से आई, तू नहीं है तो ये परछाई कहाँ से आई। दूर करने को ये तन्हाई कहाँ से आई, तू नहीं है तो ये परछाई कहाँ से आई। आँख रख कर हुआ जाता है खुदा का मुनकिर, आँख रख कर हुआ जाता है खुदा का मुनकिर, वो नहीं है तो ये बीनाई कहाँ से आई। सब्ज कोसार चमनजार दरख्तों की कतार, जो ज़मीं आपको दिखलाई कहाँ से आई। बामोदर देख के हैरान हैं आँखें मेरी, बामोदर देख के हैरान हैं आँखें मेरी, ऐसी दीवारों पे ये काई कहाँ से आई। देख कर गर्क हुई जाती है सारी दुनिया, देख कर गर्क हुई जाती है सारी दुनिया, तेरी आँखों में ये गहराई कहाँ से आई। तेरी रानाई ये कुदरत पे ताज्जुब है खुदा, इन पहाड़ों में ये ऊंचाई कहाँ से आई। एक और देख लें आप, उदास रातें उदास मौसम रुला रहे थे तो तुम कहाँ थे, उदास रातें उदास मौसम रुला रहे थे तो तुम कहाँ थे, हमारे जख्मों को हम ही मरहम लगा रहे थे तो तुम कहाँ थे। उदास रातें उदास मौसम रुला रहे थे तो तुम कहाँ थे, हमारे जख्मों को हम ही मरहम लगा रहे थे तो तुम कहाँ थे। बिछड़ रहे थे जो हमसे तुम यूं, सुनो ये बीनाई घट रही थी। बिछड़ रहे थे जो हमसे तुम यूं, सुनो ये बीनाई घट रही थी, हम एक मुद्दत से खाके सहरा उड़ा रहे थे तो तुम कहाँ थे। मैं वो पुरानी सी एक कुर्सी जो घर के कोने रखी हुई है, मैं वो पुरानी सी एक कुर्सी जो घर के कोने रखी हुई है, और उसको गम के तमाम दीमक जो खा रहे थे तो तुम कहाँ थे। झुका के पलके अब आ रहे हो जो खाक होकर बिखर गया हूँ, झुका के पलके अब आ रहे हो जो खाक होकर बिखर गया हूँ। गले दीवारों को रोते रोते लगा रहे थे तो तुम कहाँ थे। हर एक कतरा ही ले रहा था ये नाम तेरा उदास शब में, हर एक कतरा ही ले रहा था ये नाम तेरा उदास शब में, हमारे आंसू ये हाल दिल का सुना रहे थे तो तुम कहाँ थे। हमें बुलाने अब आ रहे हो जो कोह सहरा के हो गए हम, हमें बुलाने अब आ रहे हो जो कोह सहरा के हो गए हम। वो सर्द रातें जुदाई के गम सता रहे थे तो तुम कहाँ थे।
बिछड़ रहे हो तो जिस्म से तुम निकाल फेंको ये रूह मेरी, बिछड़ रहे हो तो जिस्म से तुम निकाल फेंको ये रूह मेरी, तमाम रातें ही जाग कर यूं बुला रहे थे तो तुम कहाँ थे, तुम्हारी यादों का सारा दरिया ये सारी कश्ती ये सारे मौसम, तुम्हारी यादों का सारा दरिया ये सारी कश्ती ये सारे मौसम, उबलते अश्कों से सारा दुख जब बता रहे थे तो तुम कहाँ थे, हमें खिजारास आ गई है तो अब बहारों का क्या करेंगे, हमें खिजारास आ गई है तो अब बहारों का क्या करेंगे, हम अपने तन्हाई दूर करने बुला रहे थे तो तुम कहाँ थे, हमें खिजारास आ गई है तो अब बहारों का क्या करेंगे, हम अपनी तन्हाई दूर करने बुला रहे थे तो तुम कहाँ थे, तमाम शब इंतज़ार करना फलक के तारे शुमार करना, तमाम शब इंतज़ार करना फलक के तारे शुमार करना, गमे जुदाई में जश्न फुरकत मना रहे थे तो तुम कहाँ थे, बताओ अर्पित पुरानी बातों को याद करके है कैसा रोना, बताओ अर्पित पुरानी बातों को याद करके है कैसा रोना, तमाम ही उम्र याद मुझको तुम आ रहे थे तो तुम कहाँ थे, तमाम ही उम्र याद मुझको तुम आ रहे थे तो तुम कहाँ थे, हाँ वही लम्हे वो रातें मुझे वापस कर दो, हाँ वही लम्हे वो रातें मुझे वापस कर दो, आपसे की थी जो बातें मुझे वापस कर दो, हाँ वही लम्हे वो रातें मुझे वापस कर दो, आपसे की थी जो बातें मुझे वापस कर दो, मैं जिसे देख के एक उम्र बिता सकता हूँ, मैं जिसे देख के एक उम्र बिता सकता हूँ, हाय वो झील सी आँखें मुझे वापस कर दो, अब किसी और का कहलाऊँ मैं उससे पहले, अब किसी और का कहलाऊँ मैं उससे पहले, वो हसीन लब वही बाहें मुझे वापस कर दो, अब किसी और का कहलाऊँ मैं उससे पहले, वो हसीन लब वही बाहें मुझे वापस कर दो, हाय वो गाल पे डिम्पल हंसी कंगन जुल्फें, हाय वो गाल पे डिम्पल हंसी

कंगन जुल्फें, हाय वो सर्द सी सांसें मुझे वापस कर दो। जितनी मोहब्बत थी वो सब लुटा चुका हूँ मैं, जितनी मोहब्बत थी वो सब लुटा चुका हूँ मैं, अब मेरे वादे मेरी यादें मुझे वापस कर दो। हम जहाँ मिलते थे तुमको उन्हीं लम्हों की कसम, हम जहाँ मिलते थे तुमको उन्हीं लम्हों की कसम, मेरी सुबहें मेरी शामें मुझे वापस कर दो, मेरी सुबहें मेरी शामें मुझे वापस कर दो। और एक मतला चंद अशारे देखे के, एक साए के विलाप से यूं डर रहे हैं हम, एक साए के विलाप से यूं डर रहे हैं हम, यकीन करो अब आपसे यूं डर रहे हैं हम, एक साए के विलाप से यूं डर रहे हैं हम, यकीन करो अब आपसे यूं डर रहे हैं हम। जाओ नहीं सुनो ये सदा दफनगाह की, जाओ नहीं सुनो ये सदा दफनगाह की, बैठे रहो चुपचाप से यूं डर रहे हैं हम। जाओ नहीं सुनो ये सदा दफनगाह की, बैठे रहो चुपचाप से यूं डर रहे हैं हम। जैसे के मौत जिस्म से बेहद करीब है, जैसे के मौत जिस्म से बेहद करीब है, एक आस्ती के सांप से यूं डर रहे हैं हम। कैसे बताएं बिगड़ी हुई औलाद को भला, कैसे बताएं बिगड़ी हुई औलाद को भला, आज तक माँ बाप से यूं डर रहे हैं हम। कैसे बताएं बिगड़ी हुई औलाद को भला, आज तक माँ बाप से यूं डर रहे हैं हम। आहट में कोई दर्द की खुशबू ज़रूर है, आहट में कोई दर्द की खुशबू ज़रूर है, हर एक कदम की चाप से यूं डर रहे हैं हम। आहट में कोई दर्द की खुशबू ज़रूर है, हर एक कदम की चाप से यूं डर रहे हैं हम। मुझसे निकल के तुझ में ये तहलील हो ना जाए, मुझसे निकल के तुझ में ये तहलील हो ना जाए, अपने बदन की भाप से यूं डर रहे हैं हम। मुझसे निकल के तुझ में ये तहलील हो ना जाए, अपने बदन की भाप से यूं डर रहे हैं हम। छूना तो चाहते हैं तुम्हें इन्हीं हाथ से, छूना तो चाहते हैं तुम्हें हम भी हाथ से, लेकिन हसीन पाप से यूं डर रहे हैं हम। छूना तो चाहते हैं तुम्हें हम भी हाथ से, लेकिन हसीन पाप से यूं डर रहे हैं हम। अर्पित ये दोस्ती कोई साजिश तो है नहीं, अर्पित ये दोस्ती कोई साजिश तो है नहीं, इस दर्जा मेल मिलाप से यूं डर रहे हैं हम, इस दर्जा मेल मिलाप से यूं डर रहे हैं हम। और चंद लाइन देख लीजिए। खाए थे गम हजार मगर देखते रहे, खाए थे गम हजार मगर देखते रहे, तस्वीर बार बार मगर देखते रहे, खाए थे गम हजार मगर देखते रहे, तस्वीर बार बार मगर देखते रहे, आते हुए जाते हुए खाना बदोश को, आते हुए जाते हुए खाना बदोश को, चुपचाप सायेदार मगर देखते रहे, आते हुए जाते हुए खाना बदोश को, चुपचाप सायेदार मगर देखते रहे। इतना था गम मुझे के अपने दरीचों से, इतना था गम मुझे के अपने दरीचों से, सारे ही गम गुसार मगर देखते रहे। इतना था गम मुझे के अपने दरीचों से, सारे ही गम गुसार मगर देखते रहे। अपने ही जिस्म की ये गिरती दीवारों को, अपने ही जिस्म की ये गिरती दीवारों को, बारिश में सोगवार मगर देखते रहे, बारिश में सोगवार मगर देखते रहे। आया ना कोई आएगा ये जानकर भी हम, आया ना कोई आएगा ये जानकर भी हम, सुनसान रहे गुजार मगर देखते रहे। हर चंद ना गवाही तबाही का हाल था, उड़ता हुआ गुबार मगर देखते रहे। हर चंद वो खफा भी रहे दूर भी रहे, हर चंद वो खफा भी रहे दूर भी रहे, आँखों में उनके प्यार मगर देखते रहे। कहने को उनसे तर्क ताल्लुक किया मगर, कहने को उनसे तर्क ताल्लुक किया मगर, मुद्दत से बेकरार मगर देखते रहे। आंसू भी आँख में थे था आईना सामने, आंसू भी आँख में थे था आईना सामने, थी गम की ये बहार मगर देखते रहे। पहचान कर भी जैसे ना पहचाना हो उसे, पहचान कर भी जैसे ना पहचाना हो उसे, अर्पित को बार बार मगर देखते रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद।

साहित्य के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अर्पित शर्मा का कविता पाठ और गजलें। ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को तृप्ति लटपटे का प्यार भरा नमस्कार। सुबह के साथ ही आ गए हैं हम लेकर सदाबहार फिल्म संगीत सुनहरे पल कार्यक्रम में। पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं कुवारा बाब फिल्म से अनवर की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, राजेश रोशन ने संगीत दिया है।

अनवर की आवाज़ में सुन रहे थे अभी आप ही गाना कुवारा बाप फिल्म से, लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। इसे आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। श्रोताओं अब एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 यानी कि आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का आज विषय रहेगा घुटने, कूल्हे और कंधों का दर्द और प्रत्यारोपण सर्जरी के द्वारा इनका इलाज। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर सचिन छाबड़ा हड्डी रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 यानी कि आज समय होगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो फोन करना ना भूले आज सुबह 10:32 से 11:02 तक। और ये कार्यक्रम सुने विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सूचना समाप्त हुई।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये रात फिर आएगी, इस फिल्म का ये गाना आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में।

ओपी नैयर के संगीत से सजा ये गाना भी आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम था ये रात फिर ना आएगी, और इसे आप सुन रहे थे सुनहरे पल कार्यक्रम में।

0: और अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश और साथियों के स्वर में। फिल्म का नाम है जिंदगी और तूफान। इस गीत को लिखा है राम अवतार त्यागी ने।
1: के आंचल का मुझे प्यार मिले, एक हसरत थी।

मुकेश और साथियों की आवाज में सुन रहे थे अभी आप ये गाना फिल्म जिंदगी और तूफान से। गाने को लिखा था राम अवतार त्यागी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ही गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म से। हसरत जयपुरी के बोल थे और संगीत था शंकर जयकिशन का।

बप्पी लहरी की आवाज़ में सुना अभी आपने ये गाना, फिल्म डिस्को डांसर से अनजान ने इसे लिखा था और बप्पी लहरी का ही संगीत था। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम सुनहरे पल।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में समाचार प्रभात हम अनुप्रसारित करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
4: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
6: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
8: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
9: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
8: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM की शुरुआत की गई। JEM पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। JEM से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि JEM की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
10: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं JEM से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
8: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में

0: से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
1: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋतव्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ

0: मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है। जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahi today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as Foreign Minister in 2015 and as Vice President in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
3: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah will chair the 73rd plenary session of Northeastern Council, NEC, in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of Development of Northeast Region said the session will discuss and deliberate on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development. During the session, presentations will be made on tourism, agriculture and horticulture, investment promotion and handloom and handicrafts. Union Minister Minister for Development of Northeastern Region, Jyotiraditya Sindhya, Minister of State, Sukanta Majumdar,

श्रम मिट्टी में छिपे उस बीज की तरह है जो स्वयं को गलाकर दुनिया को हरियाली दे जाता है, और श्रमिक उस बरगद की तरह जो अपने हिस्से में तपती धूप रखता है और दुनिया को छांव बांटता है। किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति इन मेहनतकश हाथों में ही होती है जो अपने पसीने से उसके सपनों को आकार देते हैं। और जब इन्हीं हाथों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए कोई आवाज उठती है तो इतिहास उसे एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन की तरह याद रखता है। भारत के श्रमिक आंदोलन को नई चेतना देने वाले

एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे नारायण मल्हार जोशी, जिनके लिए मजदूरों की पीड़ा उनकी अपनी संवेदना बनी और उन्होंने श्रम को सम्मान दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून सन 1879 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित गोरे गांव में हुआ था। ये समय भारत के लिए परिवर्तन की आहटों का समय था। देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और समाज अनेक असमानताओं के बोझ से दबा हुआ था। ऐसे समय में नारायण मल्हार जोशी का जीवन आकार ले रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी चेतना का प्रमुख केंद्र था। सन 1901 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर, मुंबई और पुणे के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का कार्य आरंभ किया। इस दौरान वो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को ध्यान से देख और समझ रहे थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। गोखले जी की विचारधारा ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और सन 1909 में वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य बन गए। यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि उनका जीवन देश और समाज की सेवा हेतु समर्पित होगा। मुंबई के कपड़ा मिल और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की दशा देखकर वो विचलित हो गए। बड़ौदा के महाराजा श्रीमंत सयाजी राव गायकवाड़ और कुछ अन्य लोगों के वित्तीय और नैतिक सहयोग से उन्होंने सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिसके माध्यम से मजदूरों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय खोले गए, पुस्तकालय बनाए गए, चिकित्सा शिविर लगाए गए तथा सहकारी समितियों का निर्माण हुआ। वो समझ गए थे कि केवल आजादी नहीं बल्कि भारत भूमि के उत्थान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का उत्थान आवश्यक है।

समय की नदी आगे बढ़ रही थी और भारत के सामाजिक जीवन में भी अनेक परिवर्तन जन्म ले रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का असंतोष चरम पर था। नारायण मल्हार जोशी ये जान चुके थे कि जब तक देश के मजदूर संगठित नहीं होंगे, तब तक वो मिल मालिकों और ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकार नहीं मांग सकते। इसी सोच के साथ 31 अक्टूबर सन 1920 को मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन हुआ। नारायण मल्हार जोशी इसके मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा के साथ मिलकर इस संगठन की नींव रखी। लाला जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और नारायण मल्हार जोशी इस संगठन के प्रथम महासचिव चुने गए और उन्होंने सन 1929 तक इस पद पर रहकर भारतीय श्रमिक आंदोलन को दिशा दी। उस दिन केवल एक संस्था का निर्माण नहीं हुआ था, बल्कि बिखरी हुई आशाओं को एक धड़कन मिली थी। मजदूरों के हितों को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधायी शक्ति की आवश्यकता थी। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1921 में नारायण मल्हार जोशी को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया। वो सन 1921 से 1947 तक लगभग 26 वर्ष लगातार इस सदन के सदस्य रहे। सदन के भीतर वो श्रमिकों की निर्भीक आवाज बनकर गूंजते रहे। नारायण मल्हार जोशी ने मजदूरों की आवाज को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने श्रमिकों की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। सन 1922 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ। नारायण मल्हार जोशी इस सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। इसके बाद वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के सदस्य चुने गए, जिससे भारतीय श्रमिक आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। भारत की सीमाओं से निकलकर मजदूरों की आवाज अब वैश्विक मंच तक पहुंच रही थी। केंद्रीय विधानसभा में रहते हुए नारायण मल्हार जोशी ने कई ऐतिहासिक कानून पारित करवाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 2026। इस कानून से पहले श्रमिकों के द्वारा संगठन बनाया जाना या अपनी मांगों के लिए हड़ताल करना एक अपराध माना जाता था, लेकिन नारायण मल्हार जोशी के अथक प्रयासों ने श्रम संघों को वो कानूनी मान्यता और सुरक्षा दी जिसने भारतीय श्रम इतिहास का भूगोल बदल दिया। इससे पहले सन 1923 में मजदूर मुआवजा अधिनियम को भी पारित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर मजदूरों को मुआवजे का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके प्रयास अद्भुत थे, जैसे किसी ने वर्षों से बंद दरवाजों को खोल दिया हो। सबके हिस्से की रोशनी सब तक पहुंच सके, इसी दृढ़ संकल्प के साथ वो लगातार आगे

समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और नारायण मल्हार जोशी की यात्रा नए पड़ावों से होकर गुजरती रही। भारतीय कारखानों, चाय बागानों और कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन किया। नारायण मल्हार जोशी को इस उच्च स्तरीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने पूरे भारत का व्यापक दौरा किया और एक ऐतिहासिक रिपोर्ट तैयार करने में मदद की, जिसने आगे चलकर भारत में न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटे तय करने की नींव रखी। 1920 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय श्रमिक आंदोलन एक नए मोड़ पर खड़ा था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भीतर एक नई विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। ये लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हड़ताल का समर्थन किया करते थे, जबकि नारायण मल्हार जोशी का मानना था कि श्रमिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दांवपेच के बजाय शुद्ध रूप से मजदूरों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण होना चाहिए। वैचारिक मतभेदों की ये आंधी जब तेज हुई तो वर्ष 1929 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने भारत के भावी राष्ट्रपति

वीवी गिरी और दीवान चमनलाल जैसे मनीषियों के साथ मिलकर एक अत्यंत साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने एआईटीयूसी से अलग होकर 1930 में इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। उनका लक्ष्य सदैव स्पष्ट था। यही कारण है कि जब मजदूरों की एकजुटता का सवाल आया तो वो अड़े नहीं रहे, बल्कि लचीलापन अपनाते हुए सन 1940 में वो पुनः एआईटीयूसी में शामिल हुए और इसके महासचिव के रूप में वो फिर से सक्रिय हो गए। कुल मिलाकर अपनी राह पर वो दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहे। अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। राजनीति धारा में वो हमेशा निष्पक्ष रहे और जब कभी मजदूरों के हित की बात आई, उनके कल्याण की बात आई, उन्होंने सब कुछ छोड़कर श्रमिक कल्याण का पक्ष लिया। भारत के भावी संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए जब लंदन में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ तो नारायण मल्हार जोशी ने इसमें भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। यहां उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर वंचित वर्गों के अधिकारों पर गहन विमर्श किया। नारायण मल्हार जोशी ने यहां इस बात की वकालत की कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान में प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए तथा श्रमिकों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देश की आजादी के बाद देश के नए औद्योगिक और श्रम कानूनों के निर्माण में वो सरकार के सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक और सलाहकार बने। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए 30 मई सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन ले, नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, ये आकाशवाणी का भोपाल।
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। लीजिए, प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं प्रभुलाल मालवीय और साथियों के गाए कुछ मालवी लोकगीत। लीजिए शुरुआत करते हैं इनकी गाई इस मालवीय रचना के साथ।

ये पारंपरिक लोक रचना अभी सुनिए आपने, प्रभुलाल मालवीय और साथियों की आवाज़ में, जिनके स्वर में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत के कुछ मालवीय लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं के स्वर में एक और लोक रचना।

ये मालवीय पारंपरिक लोक रचना अभी सुनी आपने प्रभुलाल मालवीय और साथियों की आवाज़ में। इन्हीं के स्वर में आज हम आपको सुनवा रहे थे लोक संगीत के मालवीय लोकगीत, और इसी के साथ ही कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए।

इस गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 यानी कि आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है घुटने, कूल्हे और कंधों का दर्द और प्रत्यारोपण सर्जरी के द्वारा इनका इलाज। आप इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासा और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर सचिन छाबड़ा हड्डी रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं और आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AI पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कर ले। गुरुवार आज दिनांक 4 जून को समय होगा सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731 यानी 0731। तो फोन करना ना भूले आज सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती FM 101.6 MHz पर और साथ ही इस कार्यक्रम को सुनने न्यूज ऑन AIR पर भी। और साथ ही इस समय आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन भावन हमारे आकाशवाणी इंदौर स्टेशन पर और मन भावन कार्यक्रम का समय होगा सुबह 10:05 से। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम जिसमें आज हम आपके लेकर आए हैं ए हरिहरन की गाई कुछ गजलें। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं डॉक्टर सैफी हसन की लिखी ये गजल ए हरिहरन की आवाज में।

डॉक्टर सैफी हसन की लिखी ये गज़ल अभी सुन रहे थे आप ए हरिहरन के स्वर में। कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ए हरिहरन की गाई कुछ गज़लें। लीजिए प्रस्तुत है कैफ भोपाली की लिखी ये गज़ल ए हरिहरन के स्वर में।

ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे हरी हरन के स्वर में, जिसे लिखा था कैफ भोपाली ने। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे ए हरी हरन।

की गाई कुछ गजलें। और इसी के साथ कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आपको याद दिला दें, आज सुबह 10:05 से आप सुन सकेंगे आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन, जिसमें हम शामिल करेंगे आपके फरमाइशी पत्र। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज कैलाश पवार और साथियों का गायन राग है तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी सुन रहे थे आप कैलाश पवार और साथियों का गायन राग था तोड़ी। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही देर में सुनी जिले की चिट्ठी, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आपको बता दें, आज सुबह 10:05 से यानी जिले की चिट्ठी के तुरंत बाद से आप सुन सकेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित गीत।

0: कटनी जिले की चिट्ठी
1: प्रस्तुत है।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कटनी जिले में इन दिनों बदले मौसम के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में तेज हवा और आंधी के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। जिले में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जून माह को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया संक्रमण काल प्रारंभ होने से पूर्व जनसमुदाय में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाना है, ताकि मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए मलेरिया जागरूकता रथ भी चलाया जा रहा है। कटनी में भी पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक प्रभावी तकनीक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त टैबलेट जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ विवेचना अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे अनुसंधान कार्यों में तेजी, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। कटनी में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों की ई केवाईसी किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा जारी नवीन निर्देश द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष बायोमेट्रिक के माध्यम से ई केवाईसी की कार्यवाही सभी हितग्राहियों द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कटनी में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पुलिस विधि अभियान चलाया गया। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन और महिला थाना प्रभारी वर्षा सोनकर के मार्गदर्शन में गठित पुलिस विधि की विशेष टीम ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों का दौरा किया। टीम ने चौपाटी, मनोरंजन, मेला सहित अन्य भारी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। पिछले दिनों कटनी में मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी में आयोजित की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन और परीक्षण के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की सदस्य और प्रख्यात कानूनविद अनूप नायर उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित जनों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। कटनी जिले में नागरिक सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले भर में संचालित पटाखा फैक्ट्रियों, विस्फोटक भंडारण मैगजीनों और अमोनियम नाइट्रेट फैक्ट्रियों तथा स्टोर हाउसों की व्यापक जांच और भौतिक सत्यापन अभियान चलाया गया। जिले में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आमजन को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने हेतु 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 40 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये पहल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित की जा रही है। जिला आयुष अधिकारी डॉ आशीष रेजा ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 मई से प्रारंभ होकर जिले के 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे तक पंडित खुशीलाल आयुर्वेद चिकित्सालय से योग आयोग के विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से योग सत्र संचालित किए जा रहे हैं। कटनी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आह्वान और कलेक्टर आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में 19 मार्च से जिले में जल स्तर को सुधारने और पारंपरिक जल स्रोतों को सहेजने के लिए चलाया जा रहा जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 में जिले ने उत्कृष्ट कार्य किया है। बलराम तालाब की श्रेणी में जलगंगा संवर्धन अभियान के मामले में कटनी प्रदेश के 4 अग्रणी जिलों में शामिल है। जिला प्रशासन और ग्रामीणों के साझा प्रयासों से अब तक जिले में 3000

284 जल संरक्षण संबंधी कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं, जिससे पानी को सहेजने और उसके संरक्षण तथा संवर्धन में मदद मिलेगी। कटनी में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण मकान गणना कार्य पूरा हो गया है। इसमें कटनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया है। अब प्रगणकों द्वारा बनाए गए नजरी नक्शे को ट्रेस का काम किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी का था, वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन भावन में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को तृप्ति लटपटे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपके फरमाइशी खत हम तक पहुंच चुके हैं और आइए अब करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत पहली फरमाइश के साथ। सुनने वाले हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ततरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। साथ ही पिंपरी वाशिम से खत लिखा है गबा सिंह राठौर, सातीश, अभय, अजय, यश और खुशन राठौर ने। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से सुनने वाले हैं दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार। नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक, दिनेश, रुपेश, लीलाबाई, चैताली चुमड़े और प्रीति चांदनी। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, चेतक बीरक और मीका बीरक। साथ ही मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले। शेरडी वनेर अकोला से अरुणा दामोदर।

संदीप नाथ का लिखा यह गाना सुना अभी आपने पार्थिव गोहिल की आवाज़ में। फिल्म का नाम था सावरिया और मोंटी ने इसका संगीत दिया था। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं अब एक सूचना सुनिए, आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का आज विषय रहेगा घुटने कूल्हे और कंधों का दर्द और प्रत्यारोपण सर्जरी के द्वारा इनका इलाज। आप इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर सचिन छाबड़ा हड्डी रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं और आप हमारे ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल यानी FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए समय नोट करें, आज सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर रहेंगे 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारे फोन नंबर रहेंगे 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731 यानी 0731। तो फोन करना ना भूले आज सुबह 10:32 से 11:02 तक और पूछिए प्रश्न हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन छाबड़ा से जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ है और बात करने वाले हैं घुटने कूल्हे और कंधों के दर्द और प्रत्यारोपण सर्जरी के द्वारा इनके इलाज के विषय में। आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सूचना समाप्त हुई।

0: रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना। फिल्म का नाम था दिल्ली सिक्स। गीत को लिखा था प्रसून जोशी ने, संगीतबद्ध किया था एआर रहमान ने। और सुनना चाहा था छत्रपति साहू नगर हिंगोली से रामचंद्र हिंगोले, सिद्धांत टिकू, रमाबाई सुरेंद्र, मयूरी सुरभि, मंजुषा गौतम हिंगोले ने। अशोकनगर बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू, रोहित सोनू, मोनू ठोके ने। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद हसनैन पवार ने। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता छोटू, पूजा रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े ने। ग्राम छेगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वागे, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वागे ने। वरना शाहपुर कोलापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी, अंकिता, अनिकेत, गुंडिया पांड्या, माई करिश्मा और शौर्या कामले ने। कल्याण से डॉक्टर सूरज सुरवे और नमिता प्रकाश सुरवे ने। गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कवचाले, सबीहा, सुषमा, सीमा, स्मिता, श्वेता, पूजा, राखी और मीनू ने। वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल कमा खत्री, मोहम्मद अल तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: मनभावन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगला फरमाइशी गीत आइए आपको सुनवाते हैं। सुनने वाले हैं सोमानी नगर इंदौर से BR राष्ट्रीय, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, सुवती, टोनी, निधि और बोरला मालेगांव से दत्ता गायर, सुनीता बाई, सानिका और गजानन गायर। पालदानाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफी मंसूरी। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाजापुर से MM राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और उनका समस्त राजावत परिवार। महसोल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा और चीना शेख। कोआत बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर। नूर महल महसूर से हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा अरहान, हमजा और मुजम्मिल। साथ ही संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल और मोहम्मद उमर डावर। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायक, शोभा और समस्त डागला परिवार ने इस गीत को सुना चाहा है। और साथ ही हमें खत मिला है सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिवाग, पंजाब राव निबाड़कर और संदीप पाटिल का।

और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे थे जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे ने, खुर्दी रोड मानपुर से विजय रानी, महिमा और नीतू वैद ने, सनावद मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, प्रभा, कृष्णा, विराज, अर्णव और कावांशी कटारिया ने, कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा श्रीमाली ने, आड़ा बाजार भावना टेलर के यहाँ से नेहा, मनीष शर्मा, बल्लू, जिया, राशि, भावना, आशीष जाधव और दिनेश पांजरे ने, साथ ही इस गीत के लिए हमें जलगांव सोमनाथ तहसील जिला जालना से खत लिखा था डॉक्टर नामदेव भुतेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक, अश्विनी और जलगांव से ही वैष्णवी जगदाले, हर्षुल सावंगी, औरंगाबाद से वैभव, गौरव लुखांडे, मेघराज, युवराज कोलते, रिधुरा देवी, रुद्र कोलकर और उनके पूरे परिवार ने, अहमदाबाद से इस गीत को सुनना चाहा था कंचन सोनार और कुसुम ने, कंडला बंदर कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और जैनीश जोहरी ने, साथ ही हमें खत लिखा जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर ने, लाबरिया भैरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार ने।

हाउसफुल फिल्म से ये गाना सुन रहे थे आप, सुनिधि चौहान और शब्बीर कुमार के स्वर में। शंकर एहसान लॉय का संगीत था, समीर के बोल थे, और साथ ही इस गाने को सुनना चाहा था वंदना नगर एयरपोर्ट रोड से पूजा बबीता शोभा रेखा रघुवंशी स्वाति प्रयाग चौधरी परी ललिता खर्चे गणेश कार्तिक नारायण भाव खर्चे ने, पुणे से प्रियंका आर्या पंकज वाड़ोदे जरूर वरुट से बाबा साहेब वाड़ोदे और मीनाक्षी चरपे ने, और तुषार कुर्ने प्रासिक कामड़े एकता कामड़े मेघना कुर्ने उत्कर्षा कामड़े अरुण यरगोकर ने इस गीत को सुनना चाहा था कोल्हापुर से। साथ ही कोल्हापुर से हमें फरमाइश भेजी थी अतुल गौतमी धमदीना अरुण काले और एमडी कामड़े ने।

पैडमैन फिल्म का गाना सुना अभी आपने अरिजीत सिंह की आवाज़ में, कौसर मुनीर ने इसे लिखा, अमित त्रिवेदी ने संगीत से सजाया और इसे सुनना चाहा था। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े और आरती जोंधड़े ने, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने, बन बघेरा से इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी योगेश सारवा, आशा और नीरज निलेश अंजनी सारवा ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर, सरिता गवानकर, सिद्धांत प्रिंस एकांश गवानकर ने, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित, ध्वनि और प्रणीता गवानकर ने, बीड शहर से प्रकाश पराग, दिलीप प्रदीप, केशव प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और सरला प्रकाश ने, पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी जिम्मी, अमिता दियाना और जियांश मटाई ने। आपको बता दें कि शुरू हो चुका है विविध भारती FM 101.6 MHz पर हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जहां आप फोन करके बात कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन छाबड़ा से, जो आज आपको देंगे घुटने, कूल्हे और कंधों का दर्द वो प्रत्यारोपण सर्जरी के द्वारा इनके इलाज से संबंधित जानकारी और आपके प्रश्नों के जवाब। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 2710223 और 2710224 नंबरों पे। इंदौर का STD कोड इस नंबर से पहले ज़रूर लगाइएगा जो है 0731। तो कॉल कीजिए हेलो डॉक्टर में और पाइए अपनी समस्याओं का समाधान।

रीटू से सुन रहे थे अभी आप ये गाना जुबिन नौटियाल की आवाज़ में, रोचक कोहली और नुसरत फतेह अली खान का संगीत था, और इसे सुनना चाहा था वाशिम से रविंद्र पवार, मीनाताई पवार, श्रीकांत, और वंसारी ज़िला वाशिम से एकनाथ काळे और आशा ताई काळे ने, जुनाबाई सनावत से कालू सिंह बडोले, सीताराम बडोले, हीरा लाल बडोले, तेज सिंह डावर, साहिल हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचन ने, छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने, पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा प्राची, अनुश्री और धनश्री बुरांडे ने, राजपुर से गीसु दिलवारी, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे ने, खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाड़े, सुभाष खंडाले, मंदा, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले ने।

चित्रा की आवाज़ में सुन रहे थे अभी आप ये गाना। इरशाद कामिल गीतकार थे और संगीतकार थे एमएम करीम। फिल्म का नाम था स्पेशल 26 और ये गीत आप सुन रहे थे हमारे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन भावन में। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और जिसके फरमाइश करता है उपाध्याय नगर देवास से मुरलीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, शांतिपुरा देवास से सुभाष गोडिया, राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, कैलाश महाजन, भील कॉलोनी मूसाखेड़ इंदौर से रवि डामोर, पबीता, संदीप, दुर्गा, अभिषेक, गौतम, विवान और पूरा डामोर परिवार। साथ ही खत हम तक पहुंचा है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, क्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम का। मांसवाड़ा राजस्थान से इस गीत के लिए फरमाइश भेजिए असलम खान दुलावत, शबीना दुलावत, फिरदौस, फलक, अफसा, अयान दुलावत, अनीस खान और अफान खान की। मलोट कैंप पंजाब से हमें फरमाइश भेजिए सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण गरोवर और रमेश मिगलानी की। सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान, शबीना बानो, रुखसार बानो और मोहम्मद आरिश ने इस गीत को सुनना चाहा है। और आदर्श नगर मालोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मेंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने इस गीत के लिए फरमाइश की है।

बद्रीनाथ की दुल्हनिया, इस फिल्म का ये गाना सुन रहे थे आप अखिल सचदेव की आवाज़ में। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि इस गीत को सुनने के लिए हमें एक फरमाइश किसने भेजी थी। महादेव घाट अमलेश्वर से हमें खत लिखा था डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तानी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर ने, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। साथ ही फरमाइश आई थी जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक परवेज, रोजमीन तैमूर और भैया तड़वी की। रामगंज खंडवा से हमें खत लिखा था विजय महोबिया, कविता, संजय नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज और भैयू दादा ने। और शिवाजी चौक राजम से इस गीत को सुना चाहा था अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने।

गुरु फिल्म का ये गाना सुन रहे थे अभी आप, हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज़ में। एआर रहमान का संगीत था, गुलजार के बोल थे। सुनना चाहा था धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य और वैशाली बाठे ने। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने। मक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, नानू राम कांसोटिया, नंदकिशोर कांसोटिया और दीपक कांसोटिया ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा और उल्ला आसमा ने। इन सभी की फरमाइश पर हम इन्हें सुनवा रहे थे ये गाना। साथ ही अमरावती महाराष्ट्र से हमें खत लिखा था प्रवीण नागर ने और चंदूजी हातोले और उनके पूरे परिवार ने भी इस गीत की हमसे फरमाइश की थी। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सफरुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम और कुमारी डब्ल्यू डोम ने इस गीत के लिए हमें खत लिखा। अमरावती महाराष्ट्र से ही कमरुल्ला ठेकेदार, नदीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोत्रा से मुश्ताबा खान, राहु भाई और शाहिद भाई ने। गांधी बाग ओकोला से रमेश और वैशाली कटनकर ने इस गीत की फरमाइश की। और इसी गीत के साथ अब संपन्न होता है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। तृप्ति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी सुन रहे थे आप कार्यक्रम मन भावन, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही देर में सुनिए हमारा अगला फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: रहे हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
1: श्रोताओं नमस्ते, मैं हूँ नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। जब से मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया है उसकी प्रगति थमी नहीं है। ये पहिया ऐसा चला कि आज तक नहीं थमा है। इसने जीवन के कई नए आयाम को खोज और आविष्कार के माध्यम से सुलभ बनाया है। तो श्रोताओं आज बात करेंगे साइकिल की। ये आपके जीवन में क्या परिचय देती है और आपके जीवन में इसका क्या महत्व है। शुरू करते हैं हमारे पहले श्रोता के साथ जुड़कर।
2: प्रणाम मैम, नमस्कार, आपको करता हूँ। मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
1: जी संतोष जी, कैसे हैं?
2: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके प्रसारण सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर के आप आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है मैडम आपसे बातें करते हुए हमें।
1: और हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना?
2: तो
1: संतोष जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पहला फोन कॉल आपका है और जानना चाहते हैं कि साइकिल जो है वो आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है।
2: बिल्कुल, उमंगों का खास एक सुकून भरा एहसास जो दिलाता है वो साइकिल होती है। हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक जो शौक रहा है हमारा, अब तो चल खास करके टू व्हीलर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो साइकिलें होती है उससे हमारी शारीरिक मानसिक जो ऊर्जा शक्ति होती है उसका निर्माण होता है। और साइकिल चलाने से हमारी जो पैर की कसरत है वो भी पूरी होती है और इसे बहुत ज्यादा हमें सुकून भी मिलता है। मैडम जी,
1: तो आप साइकिल को सुकून का एक जरिया मानते हैं?
2: बिल्कुल मैम, खास करके हम जब युवा रहे हैं, बताएं आपसे, अभी भी हम युवा ही हैं और हम लोग जब स्कूल जाते हैं साइकिलों से तो बहुत ही अच्छा लगता है।
1: चलिए साइकिल चलाते रहिए, तो आपके जो युवावस्था है ये एक लंबे समय तक तो जरूर बरकरार रहेगी। संतोष जी इसी उम्मीद के साथ में आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और आपने बहुत अच्छी बातें की, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बिल्कुल मैम, और आपके प्रसारण लगातार हम तक पहुँच रहे हैं, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के साथ साथ DTH पर भी आपका जो कार्यक्रम जाता है ना आकाशवाणी मध्य प्रदेश का, बहुत ही अच्छा लगता है मैडम जी ऐसे कार्यक्रम को।
1: जी जी जी जी, साथ में वेव्स OTT ऐप जो है उसके भी 2 वर्ष हो गए हैं हमारे और इस पे भी आप प्रसारण सुनिए तो आपको भी बहुत आनंद आएगा।
2: बिल्कुल मैम, और साथ में फेसबुक पर भी जो कमेंट मतलब जाते हैं आकाशवाणी भोपाल के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मैडम जी।
1: आप बहुत सक्रिय श्रोता लग रहे हैं हमारे संतोष जी।
2: बिल्कुल मैम, लगातार पत्रचार भी हम लोग करते थे, आकाशवाणी पदाधिकारी हैं, चाहे उनके निर्देशन में बहुत सारे कार्यक्रमों का निर्माण होता रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाता है।
1: अच्छा, तो एक चीज ये बताइए कि आपने कहा कि आप पत्र लिखा करते थे, तो वो लिखा करते थे को लिखा करूंगा बोलिए और लिखना शुरू कीजिए।
2: आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश तक जरूर पहुंचेगा कार्यक्रम मन भावन और कार्यक्रमों के लिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार।

0: हेलो,
1: जी नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: आपका परिचय दीजिए।
0: हम रजनी सोनी बोल रहे हैं दीदी। हम बालाघाट जिला से बोल रहे थे। नहीं
1: जी, साइकिल चलाना जानती हैं?
0: नहीं नहीं
1: लेकिन साइकिल का महत्व है आपके जीवन में, साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है ये बताएं।
0: अब देखो दीदी, अब हम बच्चे वाले हो गए। पहले हम पढ़ते थे तो चलाते थे, अब क्या है हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं।
1: तो बच्चों को साइकिल इनाम में दी कभी?
0: अरे अब देखो, बच्चे अपने पढ़ रहे हैं तो अपन तो उनके लिए लेते थे ना साइकिल। स्कूल जाते थे, प्राइवेट स्कूल, तो पहले क्या है बस का साधन नहीं, तो 4-5 किलोमीटर में बच्चे चलाते जाते थे। हमारे तीनों बच्चे ने पढ़े हैं।
1: हाँ, तो देखिए जब हम वाहन चलाना सीखते हैं ना, तो सबसे पहले
0: अभी
1: हमें
0: तो
1: साइकिल
0: हमारा
1: सीखनी
0: बड़ा वाला
1: पड़ती है।
0: बेटा, हमारे यहाँ गाड़ी वाड़ी सब है, बाकी वो कहता है साइकिल चलाने से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो साइकिल चलाने में शौक लगती है उसको, तो ऐसे व्यायाम टाइप का। हाँ, तो इसलिए वो गाड़ी भी है, पर वो कहता है साइकिल से बहुत स्वस्थ रहते हैं करके वो साइकिल भी फिर अब से फिर से खरीदे हैं। साइकिल के बच्चों ने पढ़े तो हमने उनको बेच दिया जब उन बड़े बड़े हो गए थे। जी,
1: तो अभी दोबारा साइकिल खरीदी उन्होंने।
0: अब वो क्या है थोड़ा सा बोलते हैं गाड़ी गाड़ी में अच्छा नहीं लगता है, तो साइकिल में थोड़ा सा अपना इधर उधर आस पास घर के थोड़ा सा घूम लेते हैं।
1: हाँ चलिए, तो साइकिल वो अपने व्यायाम के तौर पर ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: आपका परिचय बता दीजिए।
0: मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमो मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप मैडम?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं। मुन्ना सोनी जी, हम जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है, बताएं।
0: मैडम कम से कम 33 साल हो गए मुझे साइकिल चलाते हुए।
1: जी
0: और आज भी जो है मैं साइकिल चलाता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज साइकिल चलाने से बहुत से फायदे हैं।
1: हाँ हाँ।
0: जैसे हाथ पैर में आपके लिए कभी दर्द नहीं रहेगा।
1: हाँ।
0: कमर में दर्द नहीं रहेगा।
1: हाँ।
0: और स्वास्थ्य भी अपना बहुत बढ़िया रहेगा।
1: हाँ।
0: और दूसरी चीज क्या है कि आजकल क्या है कि जरा जरा से काम के लिए बच्चे जो है बाइक से या मोटरसाइकिल से मार्केट चले जाते हैं, तो अपने लिए जो है साइकिल से आसपास के अपने काम निपटाना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल सही,
0: उसमें स्वास्थ्य भी अपना बढ़िया रहेगा।
1: जी जी जी, इसमें काफी कुछ आपकी, देखिए सांस भी आपकी अच्छी हो जाती होगी इससे, क्योंकि इसमें काफी बल लगता है।
0: बढ़िया फिट रहते हैं।
1: हाँ शारीरिक बल लगता है तो बहुत अच्छी बात है। और पैरों की कमर की तो आप बता ही रहे हैं कि इससे आपको काफी
0: पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं अपने लिए हम।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा मुन्ना सोनी जी, आपने साइकिल के इतने इतने अच्छे फायदे गिनवाए।
0: जी मैडम नमस्कार। थैंक यू मैडम।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार
1: हाँ, आप कौन बोल रही मैम?
0: जी। मैं नीतिका वर्मा बोल रही हूँ।
1: हम जानकी गुप्ता हूँ, ग्राम भगवंत नगर मजरा।

0: लट्टी कंगड़
1: जी
0: बंदी से ट्राई कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए ट्राई कर।
1: हाँ हाँ हो जाता है, बहुत लोग बातें करते हैं, 10:30 का इसका वक्त होता है। तो जानकी गुप्ता जी, आज हम बात करना चाहते हैं साइकिल पर, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है।
0: मैडम बहुत उपयोगी है, ना पेट्रोल लगना ना डीजल लगना है, ना उसका धुआं आने, कुछ भी नहीं आने, अगर चला ले तो अपन कहीं जाते हैं साइकिल से।
1: तो आपके घर
0: जब हम स्कूल जाते थे तो साइकिल से जाते थे, जब इतनी गाड़ी गाड़ी तो चलती नहीं थी।
1: हाँ सही बात है, अधिकतम लोग तो साइकिल से ही स्कूल जाया करते थे।
0: हाँ अब तो ऐसी गाड़ी चल गई थी, अभी स्कूटी चल गई, बच्चा स्कूटी से जाते हैं, लेकिन हम लोग तो साइकिल से जाते थे, कम से कम 6 किलोमीटर दूर। अगर साइकिल खराब हुई तो पैदल भी जाते।
1: सही बात है। तो जानकी गुप्ता जी, आज भी आपके यहाँ साइकिल है या नहीं?
0: हाँ है मैम, हमारे यहाँ साइकिल साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है।
1: और उसका उपयोग कौन करता है?
0: मेरे पति तो है नहीं, मेरे बच्चा है और बच्ची है।
1: अच्छा, साइकिल चलाते हैं वो लोग।
0: हाँ साइकिल ऐसे कहीं जाते हैं साइकिल से चली जाते। लड़की पहले चलाती, 9वां में पढ़ती थी तो साइकिल से जाती थी। और हम गांव में रह रहा इस समय,
1: हाँ
0: तो वो कम से कम काफी देर से उसने साइकिल चलाई, तो थोड़ी बहुत चला दी, भूल सी गई भी। अब कल लगती मम्मी हम भूल गए साइकिल चला, मंदिर गई थी हमारे साथ तो चलाती गई थी, एक लड़की के साथ गई थी, दोनों जने चला के गई।
1: जानकी गुप्ता जी, आप अपनी बेटिया से कहिए कि वो साइकिल का अभ्यास करे, क्योंकि साइकिल चलाना, तैरना, ये कुछ ऐसी विधाएं हैं जो इंसान एक बार सीख ले तो वो भूलता नहीं है, है ना? तो बस थोड़ा सा अभ्यास करेगी तो उसको आत्मविश्वास आ जाएगा उसमें कि मैं साइकिल चला रही हूँ और मेरे से बनती है। तो चलिए, पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है साइकिल आज, क्योंकि देखिए बिना गाड़ी के तो हमारा काम हो नहीं रहा है, और पर्यावरण की मांग भी है, है ना? अभी 5 जून को हम पर्यावरण दिवस भी मनाएंगे। जाहिर बात है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रदूषण जो होता है वो धुएं से हो रहा है,
0: धुएं से होता है,
1: है ना? तो जहाँ संभव हो सके वहाँ हमें बचत करनी चाहिए, धुएं कम निकलें इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबका एक प्रयास जो है वो रहेगा तभी ये काम सार्थक हो पाएगा।
0: हाँ मैम
1: जी, जानकी गुप्ता जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, नमस्कार।

0: हाँ नमस्ते मैडम, मैं पिंडरी जिला मंडला से सुमत रिटायर शिक्षक सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ। मैडम
1: आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम देख रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर ईंधन की कमी हो रही है और वैसे भी जीवाश्म ईंधन जो है वो एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही
0: होगा, वो तो निश्चित है।
1: हाँ, तो ऐसे में जब संकट की
0: होगी मैडम, साइकिल से तो बताए ना मैं कि साइकिल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। आपको अगर शुगर है या बीपी है तो साइकिल आपको बहुत रोकथाम कर देती है, और साइकिल आपकी सस्ती भी है, और साइकिल आपकी कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बढ़िया है। साइकिल से अपना स्वास्थ्य भी सुधरता है और मेंटेनेंस की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्रकार की कोई परेशानी रख रखाव से लेकर हर चीज की पूरी समस्याएं हल कर देती है मैडम।
1: जी जी,
0: 20 साल साइकिल चलाया हूँ मैडम मैं तथा, और नदी पहाड़ सब थे, साइकिल सब जगह चल जाती है, नदी पहाड़ कहीं भी चला लूँ साइकिल बहुत सुलभ है।
1: हाँ, और छोटे मोटे नाले पड़े हैं तो हाथ में उठा करके भी साइकिल पार कर लेते हैं,
0: कंधे में रख करके ले जा लूँ चल जाती है।
1: चाह रहे थे क्योंकि देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ ईंधन बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है तो ऐसे में
0: मेरा नाती है मैडम, ये भी बहुत साइकिल चलाता है, लीजिए इससे थोड़ा बात कर लीजिए।
1: बिल्कुल,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम कबीर जैन है।
1: और कबीर, साइकिल चलाते हैं आप?
2: हाँ यस मैम।
1: और कैसा लगता है साइकिल चलाना?
2: अच्छा लगता है।
1: अच्छा, तो साइकिल से आप कहाँ कहाँ जाते हैं?
2: स्कूल, शॉप और साइकिलिंग में चल जाते हैं।
1: और मम्मी कोई सामान लाने के लिए कहती है तो साइकिल से जाके जल्दी से ला के देते हैं?
2: हाँ,
1: है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा कबीर, ये शौक हमेशा बनाए रखिए।

0: सुरेश कुमार बोल रहा हूँ, मंदसौर से। हाँ भैया।
1: सुरेश जी,
0: हाँ
1: हम ये जानना चाहते थे कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना,
0: हाँ
1: स्कूल में जो 10वीं 11वीं कर लेते हैं या फिर जब जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो वो जिद करने लगते हैं घर में कि हमें गाड़ी खरीद के दी जाए। देखिए, ज़रूरत के लिए अगर हम खरीद रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन एक स्टेटस की बात जब बच्चे करने लगते हैं कि क्योंकि वो लोग गाड़ी से आते हैं तो हम साइकिल से क्यों जाएं, भले ही उनके घर से 2-3 किलोमीटर पे ही विद्यालय है या कॉलेज है, लेकिन तब भी वो कहते हैं कि नहीं, हमें गाड़ी चाहिए क्योंकि बाकी लोगों के पास

0: खिलाड़ी है, तो वो तुलनात्मक दृष्टि से जब वो बोलते हैं तो वो कितना सही बोलते हैं?
1: वो तुलना नहीं कर रही, अगर पास में स्कूल है तो अपन को भाई पास पैदल चले जाओ, साइकिल से चले जाओ, मतलब
0: हाँ,
1: उनका कहना मानना चाहिए आजकल बच्चों को भी, माता पिता का भी भाई।
0: हाँ, बिल्कुल सही,
1: मेरा सुझाव ये आपसे मतलब है,
0: हाँ
1: बच्चों को माता पिता जगह कहना मानना चाहिए, पास में का स्कूल बोले पैदल चले जाए, साइकिल पे चले जाए, साइकिल क्या है तो मतलब।
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। ऐसा है ना कि साइकिल अगर आप चलाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, पेट्रोल से पैसे
1: स्वस्थ
0: भी
1: भी रहेंगे,
0: बचेंगे।
1: अपना खून का दौरा भी चलेगा और कसरत हो जाएगी, सुस्ती नहीं आएगी शरीर में एक।
0: और सही बात तो ये भी है ना सुरेश कुमार जी, कि आर्थिक दृष्टि से भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है ना,
1: हाँ
0: एक
1: सर,
0: हाँ बड़ी धनराशि जो है वो घर से खर्च करनी पड़ती है
1: खर्च
0: उसे
1: करनी
0: लेने
1: पड़ती
0: के
1: है
0: लिए।
1: मतलब, और पेट्रोल अगर जहाँ गाड़ी पेट्रोल नहीं, गाड़ी वो रखनी पड़ती है,
0: हाँ
1: साइकिल तो अपन कहाँ भी पैदल भी ले आ सकते, चला भी सकते, मतलब उसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है,
0: हाँ चलिए
1: मेरा विचार ये दीदी क्या।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे विचार हमें दिए हैं सुरेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया।
1: हाँ धन्यवाद मैडम।

0: जिला सागर तहसील बंडा से भोले लोधी बात कर रहा हूँ।
1: जी जी, बहुत स्वागत है भोले लोधी जी आपका। कि बच्चे जो हैं वो आज साइकिल जब चलाते हैं तो उनकी खुशी जो है इनाम के तौर पर जब हम उन्हें देते हैं तो वो बड़े खुश रहते हैं, और लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं है ना, तो वो उनको ये लगता है कि अब हमें गाड़ी चलानी चाहिए, साइकिल नहीं चलानी चाहिए। वो देखा देखी में भी ऐसा कहते हैं। तो ये देखा देखी वाली जो बात है साइकिल ना चलाने की, वो कहाँ तक उचित है ना। तो लेकिन साइकिल जो है वो एक स्टेटस सिंबल लोग बाग बना लेते हैं कि इस हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हम बहुत संपन्न और इस प्रकार से अपने आप को समझते हैं, और साइकिल चलाने को आज कई लोग जो है हीन भावना से देखते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है?
0: मैंने से साइकिल तो ठीक है, वैसे पर्यावरण से भी बच्चे माने बचा है, पेट्रोल बचता है, सही है।
1: हाँ। जी
0: साइकिल का उपयोग ज्यादातर करने चाहिए। साइकिल तो बहुत अच्छी है, पहले आदमी बोलते थे साइकिल से काम होता था, बहुत अच्छा लगता था, जहाँ जहाँ जाती थी। साइकिल तो सही है मैम, लेकिन बच्चों को नहीं देना चाहिए, छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना चाहिए, रोड पे सड़क पे चलाना चाहिए।
1: नहीं नहीं, गाड़ी नहीं देना चाहिए। साइकिल तो खैर ऐसा है कि जब बहुत छोटे रहते हैं तो वो अपने घर के सामने आसपास चलाते हैं, तो
0: ये तो है, हाँ।
1: नहीं, हमारा तो प्रश्न खाली ये था कि जो बनावटी दिखावटी जो दुनिया है उस पर दिखाने के लिए जो बच्चे जिद करते हैं ना कि नहीं अब हम साइकिल नहीं चलाएंगे, जरूरत नहीं है उन्हें बड़े वाहन की, लेकिन तब भी वो जिद करके जो है वो स्कूटी और मोटरसाइकिल वगैरह खरीदने की जिद करने लगते हैं, उसकी हम बात कर रहे थे।
0: दो मिनट का रोड कुछ हमें कहाँ कर देता है, अपन के लिए रोड नहीं करना चाहिए।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भोले लोधी जी, और आप जैसे सक्रिय श्रोता जो हैं, सुधी श्रोता जो हैं, कृतज्ञ हैं कि वो हमारे लिए इतने अच्छे विचार देते हैं और हमारे रेडियो के साथ में हमेशा जुड़े रहना पसंद करते हैं, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने बात की।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, परिचय दे दीजिए।
1: जी। लक्ष्मण सिंह चंदेल, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बात कर रहा हूँ मैं।
0: आज विश्व साइकिल दिवस है, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं
1: अच्छा मैम
0: जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि
1: जी,
0: इनाम के तौर पर कभी साइकिल मिली है, या आपने किसी को दी है, या साइकिल जब हमें कभी कोई मिल जाए कभी बतौर इनाम, है ना। कभी कभी दोस्त भी आपस में एक दूसरे से कहते थे, जब छोटे छोटे होते हैं ना, तो एक साइकिल चला रहा है, दूसरे के पास नहीं है, तो वो कहता है अच्छा मैं एक राउंड मारने के लिए मुझे दे दे, है ना। फिर वो जो खुशी मिलती है ना, जब उसे मिल जाती है साइकिल, तो वो
1: देखिए मैम, ऐसा है, साइकिल तो मैम हम अभी भी चलाते हैं।
0: हाँ
1: जी जी बिल्कुल, और खेत पे जाते हैं तो साइकिल से ही जाते हैं मैम। और कई बार ऐसा होता है, जैसे आप बता रही हैं मैम,
0: हाँ हाँ
1: कुछ मित्र लोग भी मांग लेते, क्या बताया हमें, राउंड लगा के आ रहे हैं,
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: बाद में आपकी वापस कर
0: तो वही हम कह रहे हैं कि इनाम के तौर पर भी कभी कभी हमें जब साइकिल मिलती है ना, या पहली बार जब कभी आपको साइकिल मिली होगी, तो
1: जी।
0: आप कितने प्रसन्न हुए थे और क्या आपका अनुभव रहा था, ये बताइए,
1: प्रसन्न क्या
0: कुछ
1: क्या
0: याद है
1: पहली
0: तो।
1: बात तो है, जब हम मतलब सीख रहे थे चलाबो मैम, तो
0: हाँ
1: हम यही विनती करते भगवान से, हम पे साइकिल बन लगे, हम नारियल फोड़ जब बहुत बहुत मतलब बनने लगी थी। पर कैची, पहले कैची सीख रहे थे मैम, तो
0: हाँ
1: कैची के बाद में फिर डंडा, फिर सीख सीख पे मतलब ऐसे ही सीख पाए थे।
0: हाँ क्योंकि छोटी साइकिलें बहुत कम बनती थी, बड़ी
1: जी
0: साइकिल
1: जी
0: होती थी तो कैची चलानी पड़ती थी, क्योंकि सीट तक
1: बिल्कुल मैम,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: हाँ पैर नहीं
1: और कहीं भी,
0: पहुंचते
1: जैसे अब जगदीश रथ यात्रा हो अभी आ रही है जो मैम,
0: थे। हाँ हाँ
1: इसके लिए हम लोग पथरिया जा रहे थे, कोई चलो कोई 3 जने चलेंगे, आपको टेबल चलाएंगे, कहीं आधी रास्ता में तुम चलाना, आधे में हम चलाएंगे बहुत
0: हाँ
1: मजा आ रहा था मैम।
0: चलिए, कितना अच्छा लगता है ना, साइकिल के पुराने दिन भी याद कर लो तो बड़ी खुशी होती है ना।
1: बिल्कुल मैम,
0: चलिए लक्ष्मण सिंह चंदेल जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और साइकिल चला करके आप यूं ही खुश रहा कीजिए।
1: बिल्कुल मैम,
0: चलिए नमस्कार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्कार,
0: जी, नमस्कार
1: परिचय दे दीजिए आपका।
0: जी। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार साहू।
1: जी
0: मैं कटनी से बोल रहा हूँ,
1: जी
0: मध्य
1: जी
0: प्रदेश कटनी से।
1: जी जी जी बहुत स्वागत है आपका।
0: मैं एक्चुअली मैम आर्मी से हूँ
1: आर्मी में हैं तो आप लोग क्या साइकिल चलाते हैं?
0: जी। साइकिलिंग करते हैं मैम।
1: अच्छा, तो साइकिल का कितना महत्व है आर्मी में?
0: साइकिलिंग एक्चुअली मैम हम लोग क्या है, जैसे ड्यूटी एरिया थोड़ा सा दूर है तो क्या है, हम लोग या तो बाइक रखते हैं या तो साइकिल वगैरह रख लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: जी तो देवेंद्र कुमार साहू जी ये जानना चाहेंगे कि आजकल तो बहुत एडवांस साइकिलें आने लगी हैं, तो अच्छी साइकिलें भी आ चुकी हैं, लेकिन तब भी लोगों का रुझान जो है वो साइकिल की तरफ नहीं है। तो साइकिल की
0: हाँ
1: तरफ रुझान जो लोगों का बढ़े, इसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: आजकल क्या है, रूटीन भी लोगों का ऐसा हो गया है कि पैदल चलना नहीं चाहते है ना,
1: जी।
0: तो अगर साइकिल से अगर जाते हैं तो बहुत ही फेसिंग करना है, थोड़ा सा दूर है 2-3 किलोमीटर, तो साइकिल से अपना काम हो
1: हाँ
0: जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। और साथ साथ में हम तो ये कहते हैं कि साइकिल के प्रति रुझान यदि वो बढ़ा लें तो
0: हाँ बिल्कुल
1: व्यायाम भी होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बहुत अच्छा होगा।
0: बिल्कुल, उससे क्या बॉडी फिट रहेगा,
1: हाँ, और पेट्रोल बचेगा,
0: शरीर
1: पर्यावरण की दृष्टि से
0: थोड़ा
1: बहुत अच्छा
0: प्रेजेंट
1: है।
0: बहुत हो गए तो ये सब में कंट्रोल होगा।
1: जी, बहुत धन्यवाद देवेंद्र कुमार।

0: तो श्रोताओं, साइकिल कितनी उपयोगी है इस विषय पर श्रोताओं ने अपने विचार दिए। आज साइकिल चलाना कई लोग पसंद नहीं करते, वक्त की कमी की बात कहते हैं तो कभी दूरी की। लेकिन मित्रों, पर्यावरण की दृष्टि से आज के परिप्रेक्ष्य में साइकिल को अपनाना जरूरत बन गई है। आज एडवांस साइकिल मार्केट में उपलब्ध है, गियर होते हैं, उसमें बैटरी भी होती है। ये सारी सुविधाओं को यदि आप अपनाएंगे तो आपको आसानी भी रहेगी और आज के परिप्रेक्ष्य में साइकिल देश हित में साबित होगी। चाहते थे लोगों में साइकिल के प्रति जागरूकता बढ़े, तो आप कार्यक्रम समेटने की अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री यवेद कपूर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कपूर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वो आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली, औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी सूरत में 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की जा रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मॉनसून की गतिविधियां जारी है। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका है। और भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में शुरू हो रही 4 दिवसीय ओपन रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में पुरुष फ्री स्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आप सुन रहे थे।

0: इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सबसे पहले सुनते हैं प्यार का मौसम फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत आरडी बर्मन का है और इस गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारनी सूरज ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहा है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिए, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिए, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन ने।

अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की। नाम है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गीत को पसंद किया है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती जोंधड़े, नेपाल पैलेस सागर से ये हमारे श्रोता हैं। तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन और सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा हदिया, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्ताफा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं बरसात की एक रात फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

तेरे मेरे सपने इस फिल्म का गीत अब आपके लिए पेश कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है नीरज ने और धुन तैयार की है SD बर्मन ने, और इस गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, और इसी गीत को पसंद किया है हुलास राम कटरे, नानेश्वरी कटरे। ये हमारे श्रोता है करियादंड बालाघाट के, और सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने लिख भेजी है हमें इस गीत की फरमाइश। तो सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद तेरे मेरे सपने फिल्म से।

कुटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, और दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय ने। जयबराज प्लॉट राजकोट से ये पत्र हमारे पास आया है मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट का। और देवरी भाटापारा से ही इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विन वर्मा और गणेश मिस्त्री।

और कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं हम दोनों फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत साहिर लुधियानवी ने लिखा है और संगीत जयदेव का है। इस गीत को पसंद किया है बनिया पारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी रचाती और पूरा माखीजा परिवार। साथ ही साथ इसे पसंद किया है इस्लामपुर सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। और बेरड़ी से ये हमारे श्रोता ने पत्र भेजा है हुकुम करम कर, सुनीता करम कर, हार्दिक करम कर, प्राची और तनु करम कर ने। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं हम दोनों फिल्म का ये गीत।

0: पत्र द्वारा भेजी गई फरमाइश के आधार पर आज अभी श्रोता सुन रहे थे अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
5: क्या?
4: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
5: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: और सुनेंगे कैसे?
4: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
0: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
1: वही दोपहर 1 बजे।
0: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: दी, ये देख कैसे।
6: हैप्पी बर्थडे भाई।
5: दीका,
7: हाँ मेरा फेवरेट कलर
6: हमेशा शॉपिंग।
8: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
9: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
10: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
11: आई नो ना।
10: RBI कहता है,
12: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
0: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
1: वही दोपहर 1 बजे।
0: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।

प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। आज सुनिए इसकी 9वीं कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

पिछली कड़ी में आपने सुना कि सारे का निकाह रसूल से हो जाता है। सारे और रसूल के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगती है। अपनी बेटी को नाखुश देखकर हसन बट एक दिन फाता पर बरस पड़ते हैं। इसके बाद हसन बट घर छोड़कर पास ही एक कोठरी में रहने लगते हैं। एक दिन मुश्ताक हसन

बट से मिलने आता है, जहां सारे से मुलाकात के बाद उन दोनों के बीच की गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और वे अक्सर मिलने लगते हैं। अब आगे।

0: भागे हैं मुश्ताक? आओ, बड़ी देर कर दी।
1: वो सारे कुछ लोग मिल गए थे।
0: मुश्ताक, मुझे एक जरूरी बात करनी है।
1: हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है?
0: अब हम यहाँ नहीं मिल पाएंगे। गांव वालों को हमारे मिलने की भनक लग गई है, और वे लोग हमें अलग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
1: सारे, तुम फिक्र ना करो, गांव वाले हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। जब हम एक हैं तो हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा।
0: पर मुझे बहुत डर लग रहा है मुश्ताक, अगर ये बात गांव में फैली और रसूल को पता चला तो वो तो कुछ भी कर सकता है। हमें कुछ करना चाहिए मुश्ताक।
1: अरे तुम इतनी परेशान ना हो, मैं तलाक के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रसूल के आने के बाद ही कुछ हो सकता है।
0: ठीक है, पर तब तक हमें एहतियात से काम लेना होगा, ताकि गांव वाले हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी ना कर सकें।
1: सारे, डरने की कोई बात नहीं, रसूल के आते ही हम तलाक की बात कर लेंगे। और जहां तक गांव वालों की बात है तो कुछ दिन हम नहीं मिलेंगे।
0: हाँ, यही ठीक रहेगा।
1: ठीक है सारे, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना।
0: आप भी अपना ख्याल रखना।

0: अस्सलाम वालेकुम भाई।
1: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई।
0: क्या बातें हो रही थी?
1: अरे वो कुछ भी नहीं, बस यूं ही इधर उधर की बातें हो रही थी।
0: अरे इधर उधर की बातें, पता नहीं चला कुछ? अरे मिल्की कोठी में जो हसन भट रहता है ना।
1: अरे हाँ हाँ, पर क्या हुआ हसन भट को?
0: अरे उसकी बेटी जो सारे है ना।
1: हाँ हाँ जानता हूँ उसे, बोलो तो सही।
0: अरे मुश्ताक के साथ उसका चक्कर है।
1: लाहौल विलाव कुवत। अरे मियाँ ये क्या कह रहे हो?
0: अरे सही कह रहा हूँ, वो लोग हसन भट की कोठी में मिलते हैं।
2: सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है भैया,
1: लेकिन सारे का निकाह तो रसूल के साथ हुआ है ना, अब फिर ये?
2: अरे पहले तो उसी मुश्ताक के साथ हुआ था, फिर तलाक हो गया था ना।
0: इसका मतलब है तो रसूल की बीवी ना। फिर एक औरत अपने मर्द की गैर हाजिरी में गैर मर्द से मिले, ये तो उसूल के खिलाफ है।
1: हाँ हाँ भैया बिल्कुल, अरे इससे तो हमारी बहु बेटियाँ भी बिगड़ सकती हैं।
0: हाँ, हमें कुछ करना चाहिए।
1: अरे बेगैरत औरतों को जो मर्द के रहते दूसरे मर्द को देखे उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए।
2: हाँ लेकिन सारे ऐसा क्यों करेगी?
1: अरे जिस औरत को मर्द की हवस हो वो कुछ भी कर सकती है मियाँ।
2: हाँ लेकिन मुश्ताक उसका पहचान वाला है, उससे मिलने में क्या बुराई है? अरे हो सकता है वो लोग यूं ही मिलते रहते हो।
0: लाहौल विलाकवत। अरे मैंने तो सुना है रसूल को धोखा देकर सारा मुश्ताक के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती है।
2: अरे तो रसूल कौन सा भला आदमी है, है? कि आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं?
1: अरे मर्द चार चार निकाह करे ये जायज है, हमारे मजहब में इसे जायज बताया गया है। पर औरत के लिए अपने शोहर को छोड़ दूसरे मर्द को छूना भी गुनाह है, और अगर कोई इस पाक असूल को तोड़ता है तो उसे सजा का भागीदार होना ही पड़ेगा।
0: इस मामले में फाता व हसन भट्ट को हम सब लोगों को मिलकर समझाना चाहिए ताकि वो सारे पर लगाम कसे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बिल्कुल सही कहते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो सारे को पूरे गांव के सामने सजा दी जाएगी।
0: हाँ।
1: ताकि हमारी बहु बेटियां सबक ले सकें।
0: हाँ, और भाई दूसरे गांव का आदमी हमारे गांव

0: बेटी के साथ रंग रैलियां मनाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
1: अरे पहले उसके अम्मी और अबू से तो बात करो, अगर बात सुलझ जाए तो अच्छी है, अरे बदनामी से तो बचेंगे।
2: हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है, हम हसन भट और फाता से बात करेंगे, नहीं माने तो गांव में पंचायत बुलवाएंगे। एक औरत हमारे मजहब को नकारे ये हम नहीं सहेंगे मियाँ। हाँ चलो, ये नहीं सहेंगे हम।

0: सुन ली ना अपनी बेटी की दास्तान, सारे गांव में थू थू हो रही है हमारी।
1: पाता, शांत रहो। लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं हमारे लिए ये मायने नहीं रखता।
0: तो और क्या करोगे तुम बाप बेटी मिलकर? हुँ?
1: तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती क्या? अरे हमें सोचने तो दो।
0: मेरी बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। सारे अब मुश्ताक से कभी नहीं मिलेगी।
1: सहरे और मुश्ताक मिलते हैं या नहीं, अगर मिलते ही हैं तो वो हमारा रिश्तेदार ही है, कोई गैर तो नहीं। और तुम किन लोगों की बातों में आकर ये सब तमाशा कर रही हो?
0: तमाशा? अरे तमाशा मैं नहीं कर रही, तमाशा तुम और सारे कर रहे हो, सारा गांव हमारे नाम पर।
2: अब रहने भी दो अम्मी।
0: क्यों रहने दूं? के तू सारे गांव में मुंह काला कर आए, इसलिए?
2: मैं मुश्ताक से प्यार करती हूँ।
0: सारे सारे कमबख्त लड़की, बंद कर अपनी जुबान वरना हलक से खींच कर बाहर कर लूंगी। मुझसे जुबान लड़ाती है, तेरा निकाह रसूल से हुआ है और तू अब मुश्ताक से प्यार करती है? जुबान न काट दूं तेरी।
1: ये क्या कह रही है फाता?
0: मैं जो कह रही हूँ वही सही है।
1: तो क्या गांव वाले सच बोल रहे हैं?
0: नहीं तो क्या झूठ बोलेंगे?
2: ये सच है अबू कि मैं मुश्ताक से मिलती हूँ, पर गांव वाले जैसा कह रहे हैं वो सच नहीं है।
0: हाय, किस्मत फूटी मेरी जो तुझे जना बदनामी करा कर जुबान लड़ाती है।
2: जो बात है वही कह रही हूँ।
1: सारे, अब तेरा निकाह रसूल से हो चुका है और ऐसे में तू रसूल के सिवा किसी और से मेल जोल रखे तो ये हमारे मजहब के खिलाफ है बेटा, और इससे हमारी बदनामी होगी। अगर हो सके तो तू मुश्ताक से ना मिल।
2: मुझे और मुश्ताक को मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
1: सारे, क्या तुझे अपने बूढ़े बाप पर तरस नहीं आता? अब मैं सारे गांव वालों को क्या जवाब दूं? क्या कहूं मैं उनसे कि मेरी बेटी हमारे सामने हमारे उसूलों को खाक में मिला रही है और हम कुछ भी नहीं कर सकते?
2: अब्बू अब्बू अब्बू, आप परेशान मत होइए, जो होगा उसे मैं संभालूंगी।
0: अरे नामाकूल, तू तो हमें मार कर ही खुश होगी।
2: कौन किसे मार रहा है अम्मी, ये तो खूब जानती है।
0: मुझसे जुबान ना लड़ा, आखिर तू कहना क्या चाहती है? मैं बुरी हूँ और तू जो कर रही है वो सही है।
2: मुश्ताक से तलाक किसने दिलवाया मुझे? मैं आज भी मुश्ताक से प्यार करती हूँ, और जहाँ तक बात रसूल की है तो मुझे बदनामी का कोई डर नहीं। रसूल से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती।
0: कुछ भी हो, अब रसूल तेरा शौहर है।
2: रसूल को मेरी जिंदगी में जबरदस्ती धकेला गया है, और अम्मी ये सब तेरा किया धरा है, मैं रसूल को शौहर नहीं मानती।
0: अरे एक बार जो रिश्ता बन जाए वो कभी नहीं टूटता।
2: मेरा रिश्ता सिर्फ मुश्ताक से था, है और रहेगा।
1: सारे, एक बार और सोच ले बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोच। हम जिस समाज में रहते हैं हमें उसे जवाब देना होता है, और अगर तू रसूल के रहते मुश्ताक से अपने ताल्लुकात रखती है तो हम क्या जवाब देंगे? बोलो।
2: किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है अब्बू।
0: तुम्हें नहीं है शायद, पर समाज इन रिश्तों को नहीं मानता, और हमें तो जवाब देना ही होगा। हम इस समाज की मर्यादा को नहीं तोड़ सकते।
2: किस जवाब और किस मर्यादा की बात कर रही है अम्मी? आज जो लोग तुमसे, अप्पू से या मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मुश्ताक से रिश्ता क्यों रखती हो, तो क्या तुम्हारा समाज मेरे सवालों का जवाब देगा कि रसूल से नूरी का तलाक क्यों हुआ? मेरी इच्छा के बगैर रसूल से मेरा निकाह क्यों पढ़वाया गया? मुश्ताक से मेरा तलाक धोखे से क्यों करवाया गया? रसूल जो मेरा शौहर है, वो मुझे छोड़कर शहर में दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात क्यों रखता है?
0: अरे जा, अपनी जुबान न चला। तू औरत है और औरत की मर्यादा में रह। मर्दों की बातों में दखल अंदाजी न दे। औरतों को सवाल पूछने का हक नहीं।
2: जो इंसाफ करते वक्त दोनों तरफ की बातें ना सुने, उनके सामने मुझे दलील देने की कोई जरूरत नहीं है।
1: सहरे, रसूल से तेरा निकाह हुआ है, क्या तू इस रिश्ते को नहीं मानती? क्या तुझे हम पर भरोसा नहीं है? आखिर तू चाहती क्या है बेटा?
2: अब्बू, मैं कुछ नहीं चाहती, कुछ भी नहीं। रसूल से मेरा निकाह हुआ है, पर रसूल के लिए मैं सिर्फ एक देह हूँ, बीवी नहीं। क्योंकि रसूल के लिए तो औरत सिर्फ एक गुलाम है। मैंने मुश्ताक से प्यार किया था अब्बू, और आज भी मुश्ताक से ही प्यार करती हूँ।
0: तेरा तलाक हो चुका है।
2: हमारा तलाक एक धोखा था।
0: मजहब तलाक मानता है।
2: मैं उस मजहब को नहीं मानती जो इंसानी रिश्तों को भूल जाए।
0: तू औरत है और तुझसे जो कहा जाए वो ही करेगी।
2: मैं औरत हूँ इसलिए किसी मर्द की जूती बनकर रहूंगी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी इच्छा से मुश्ताक के साथ रहूंगी, और रसूल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा।
0: सारे देख, ये अच्छा ना होगा। तेरा निकाह रसूल से करने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, ये शायद तू नहीं जानती।
2: तकलीफ?
0: तू ऐसे नहीं मानेगी। रसूल को आने दे, वही समझाएगा तुझे।
2: हाँ हाँ, आने दो रसूल को, मुझे अब डर नहीं है किसी का। अब मैं जान गई हूँ कि औरों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करती रही है तू।
0: मेरे घर में रहकर मुझे ही धौंस दिखाती है।
1: फाता, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हमें इस मसले पर सोच विचार करना चाहिए। अगर सारे नहीं चाहती कि वो रसूल के साथ रहे, तो हमें भी उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पहले भी एक बार हम सारे के साथ गलती कर चुके हैं। अब
0: अम्मा तुम चुप रहो। आज तक किसी का भला चाहा है तुमने? तुम्हारी बेटी सारे गांव में मुंह काला किए फिर रही है। शौहर रहते मुश्ताक से मिलती जुलती है, और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। हाय,
1: मैं तरफदारी नहीं कर रहा। अगर सारे चाहती है कि वो मुश्ताक के साथ रहे, तो उसे...
0: या खुदा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, और इस घर में तो कभी नहीं। मैं ऐसा हरगिज ना होने दूंगी।
2: तो मैं ये घर छोड़ दूंगी।
0: धमकी देती है मुझे अपनी माँ को।
2: अम्मी, अगर तू यही चाहती है तो यही सही। मैं इस घर में नहीं रहूंगी।

0: जब कहो तब मैं ये घर छोड़ सकती हूँ।
1: सारे अंदर जा, हमें सोचने दे कि हम क्या करें।
0: जरा देखो इस बदसात लड़की की हिम्मत तो देखो।
1: सारे तू अंदर जा। फाता ये ना समझ कि वो अभी भी बच्ची है, अच्छे बुरे की पहचान है उसे। हमने उसके जिंदगी में पहले ही जहर घोल रखा है, हमें ही संभालना होगा उसे।
0: या खुदा, तुम बाप बेटी पागल हो गए हो। बेटी की जिद के सामने तुम झुक सकते हो, मैं नहीं।
1: अरे हमें सारे की खुशी के बारे में सोचना है, उसके भले के लिए सोचना है। समाज अपनी जगह है और वो
0: और क्या, अपनी बेटी को उस मुश्ताक के पास भेज दोगे क्या? रसूल को क्या जवाब दोगे?
1: आने दो रसूल को, फिर बात करते हैं। अरे अभी तो तसल्ली से रहना होगा हमें।

0: आ गए रसूल, आओ बैठो यहाँ।
1: फाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
0: क्या सुन रहा है?
1: सारे के बारे में लोग जो कह रहे हैं, क्या वो सच है?
0: अब तुमसे क्या छुपाना बेटा?
1: फाता, साफ साफ कहो, क्या ये सच है?
0: हाँ, तुम्हारे जाने के बाद ही सारे मुश्ताक से मिलती रही है।
1: तो तुमने उसे रोका नहीं?
0: रोका था, पर पहले तो मुझे इधर उधर की सुना देती थी, पर जब बात बढ़ गई और पूरे गांव को पता चल गया तो फिर
1: क्या? अरे, ऐसी औरत के हाथ पैर तोड़कर घर में बंद कर देना चाहिए।
0: सही कहते हो रसूल, पर मैं तो लाचार हो गई हूँ। अब तुम आ गए हो तो अब तुम ही संभालो उसे।
1: ठीक है, सारे कहाँ हैं? जरा बुलाओ उसे।
0: घर में ही है, पर बेटा जरा समझा उसे कि इस तरह की हरकत ना करे, और तू भी ध्यान दिया कर उसकी तरफ।
1: ठीक है।
0: औरत को एक बार प्यार से देखेगा ना तो तेरी गुलामी को तैयार हो जाएगी।
1: फाता, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, दो पैसे जोड़ता हूँ, अपने मन से खर्च करता हूँ। अरे, सारे जैसी कई लड़कियां मेरे जूतों में पड़ी रहती हैं। अरे, वो तो तुम्हारी बातों में आकर निकाह को हाँ कर दी थी, वरना मुझे क्या पड़ी थी सारे से निकाह करने की। पर जब निकाह हो ही गया तो उसे वही करना होगा जो मैं कहूंगा, और जब मैं नहीं रहता तो तू क्या करती है? अरे, मेरे से इतने पैसे लेती है किस लिए? अरे, तुझसे अपनी बेटी भी नहीं संभलती?
0: अरे समझाया था, समझाया था, पर
1: अरे, तुम पर जितने पैसे खर्चे हैं मैंने, उतने में 10 साराई को अपने साथ घुमा चुका होता। पर तुझ पर तरस आ जाता है सो मन मार लेता हूँ। पर अब पानी सर से ऊंचा जा चुका है, सारे मेरी बीबी है और उसे मेरे कहे पर चलना होगा।
0: हाँ हाँ, वही तो मैं समझाती हूँ उसे, पर मेरी सुने तब ना।
1: बुला उसे, मैं समझाता हूँ।
0: सारे
2: आई अम्मी।
1: क्योरी, मेरे जाते ही तेरे चेहरे पर रौनक आ जाती है और मेरे सामने ये मनहूस चेहरा लेकर आ जाती है।
2: हुआ क्या है?
1: जो बात पूरे गांव को पता है, जो बात अभी अभी फाता ने बताई है, क्या वो बात तुझे मालूम नहीं? हाँ, बोल, बोलती क्यों नहीं? मैं ही बताता हूँ तुझे।
2: रसूल, तू अब ऐसा नहीं कर सकता।
1: तो तू मुझे समझेगी कि क्या करना है और क्या नहीं है? अभी बताता हूँ तुझे।

0: औरत का मजहब होता है शोहर की सेवा करना, उसके कहे को मानना। अगर मर्द घर से बाहर रहे तो उसका इंतजार करना। और तू, तू मेरे ना रहने पर उस मुश्ताक के साथ ऐश करती थी।
1: अरे अरे सारे बेहोश हो गई। अभी छोड़ दे, अभी छोड़ दे, अब अकल ठिकाने आ जाएगी।
2: अरे ये शोर कैसा है? अरे सारे को क्या हुआ है? क्या हुआ सारे बेटा?
0: अरे कुछ नहीं, अब इसकी अकल ठिकाने आ गई।
2: सारे उठ मेरी बच्ची, सारे।
1: अरे रहने दो, बड़े बाप बनते हो, तुम्हारी नाक के तले ही हमारी बदनामी करती रही और अब प्यार जता रहे हो।
2: अरे तुम लोगों ने मिलकर मारा है सारे को, फाता तुम माँ नहीं है। सारे बेहोश हो गई और तुम देखती रही।
0: अरे अब तुम भी अपना रोना बंद करो, मेरी बदनामी करेगी तो सारे के साथ ऐसा ही होगा।
2: बंद करो तुम लोग अपनी हैवानियत, अब तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सारे, मैं सारे को अपने साथ कोठी पे ले जा रहा हूँ। सारे उठ बेटा, उठ, चल बेटा।

0: अबू।
1: अरे बेटा, तुम ठीक तो हो?
0: हाँ अबू। अबू, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
1: बेटा, वक्त के हाथों में हम सब कठपुतलियां हैं। वक्त जो करेगा हमें वही देखना है।
0: पर वक्त को बदला तो जा सकता है अब्बू।
1: नहीं मेरी बच्ची, नहीं। वक्त हमारी नियति बनाता है और उसे बदलना नामुमकिन है।
0: तो क्या मुश्ताक से मेरी मुलाकात अब कभी नहीं हो सकेगी?
1: वक्त ने चाहा तो मुश्ताक से कोई अलग नहीं कर सकता तुझे।
0: अब्बू, आप तो मेरे साथ है ना?
1: हाँ सारे बेटे, अगर तेरी खुशी इसी में है तो यही सही, मैं तेरे साथ हूँ।
0: रसूल के साथ तलाक हो जाने के बाद ही मैं मुश्ताक के साथ रह सकती हूँ अब्बू।
1: वक्त ने चाहा तो ऐसा ही होगा, पर पहले तू ठीक हो जा, उसके बाद सोचा जाएगा।
0: अब्बू, अब्बू, हमें तलाक के बारे में मुश्ताक से बात करनी होगी।
1: तू आराम कर, हम बात कर लेंगे, और खुदा ने चाहा तो तुम्हारी मुराद जरूर पूरी होगी।
0: अब्बू, मेरी वजह से आपको भी परेशानी हो रही है ना?
1: अरे पगली, औलाद की खुशी तो माँ बाप की खुशी होती है, उसमें तकलीफ कैसी उठानी? तू ऐसा ना सोच कि तेरी मदद करने में मुझे तकलीफ होगी। तू फिक्र मत कर बेटी, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। मुश्ताक तलाक के लिए जरूरी बातें पता कर रहा है।
0: पर अब्बू, क्या रसूल मानेगा?

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की नौवीं कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जी।

जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सुप्रिया, हरीश और ललित। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से मुलाकात की। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। शशि कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और सूरत में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति देने के उद्देश्य से हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल एक बैठक के दौरान अधिकारियों एवं खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। और खेलों की खबर में सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडिया वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम महिला सभा।

कार्यक्रम महिला सभा में स्वागत है सखियों आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी। सखियों, इन दिनों आप अपने प्यारे प्यारे मासूम बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रही हैं ना। अरे भाई, लेना भी चाहिए। सखियों, भोले मासूम बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं। जरा सोचिए, जब ये निर्दोष बच्चे आक्रामकता के शिकार हो जाते हैं तो इनके बाल मन पर क्या बीतती होगी। जी हाँ सखियों, आज आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। एक वार्षिक आयोजन जो हर साल 4 जून को मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों द्वारा झेली गई पीड़ा को स्वीकार किया जा सके। ये दिवस बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। सखियों, ये तो बात हुई हमारे प्यारे मासूम बच्चों की, और अब बात करते हैं, जी हाँ, कुछ लाभकारी योजना की। ध्यान से सुनिएगा सखियों। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में से

बात कर रहे हैं स्वाधार गृह योजना की। इसका मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त परिस्थितियों में फंसी महिलाओं को आश्रय, भोजन, चिकित्सा, कानूनी सहायता और पुनर्वास प्रदान करके उन्हें सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करना है। ये योजना सखियों 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की उन महिलाओं के लिए है जो घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार या मानव तस्करी की शिकार हैं। परिवार द्वारा बेघर या परित्यक्त की गई विधवाएं, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित, आतंकवादी, चरमपंथी हिंसा की शिकार महिलाएं, जेल से रिहा हुई महिला कैदी भी इसका लाभ उठा सकती हैं। जी हां सखियों, अब इसे मिशन शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। यदि आपके संपर्क में सखियों कोई महिला इन संकटों का सामना कर रही है तो वो अपनी नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वाधारगृह संस्थाओं से संपर्क कर सकती हैं। तो आप अगर पीड़ित महिलाओं के संपर्क में हैं तो उन्हें रास्ता दिखा सकती हैं। और अब सुन लेते हैं सखियों एक प्यारा सा मीठा सा गीत।

0: सखियो गीत बहुत प्यारा था और निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। और अब हम शामिल होते हैं, जी हाँ, वार्ता में। विषय है आधुनिक भारत में डिजिटल नारी। वार्ताकार हैं प्रीति दुबे।
1: चार दीवारी से वैश्विक क्षितिज तक नारी आधुनिकता में भी संयमित होकर दहक रही जैसे चिंगारी। कंधे से कंधा मिलाकर नर से भी आगे होती नारी। नमस्कार श्रोतागण। पल्ले की गांठ में रुपए सिक्के बांधती नारी घर की चार दीवारी को लांघकर और घर की चार दीवारी में रहकर भी अब सिर्फ परिवार या पति का साथी नहीं, वरन देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम है, सफल है आज की भारतीय नारी। आज मैं प्रीति दुबे आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जो केवल तकनीकी का बदलाव नहीं बल्कि आधी आबादी के आत्मसम्मान और सामर्थ्य की एक नई गाथा है। यह विषय है आधुनिक भारत में डिजिटल नारी। मेरी इस बात की शुरुआत समय के उस चक्र से होती है जहाँ स्त्री और घर की चार दीवारी का एक गहरा रिश्ता है। इतिहास गवाह है, प्राचीन काल से ही महिलाओं को अक्सर घर की चार दीवारी के भीतर ही रहना पड़ा, किंतु उस सीमित दायरे में रहकर भी वह कभी कमजोर नहीं पड़ी। वह शांत रहकर भी पूरे घर की धुरी बनी रही। उसने पूरे परिवार को संभाला, संस्कारों को सींचा और सीमित संसाधनों में भी पूरे घर की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। जहां नारी पल्ले की गांठ में सिक्के बांधकर रखती थी, वहीं आज समय के बदलाव में मोबाइल वॉलेट अपने साथ रखती है, अर्थात पल्ले की गांठ से मोबाइल वॉलेट तक का सफर अब नारी ने अपनी बुद्धिमत्ता सूझबूझ से तय किया है। बदलाव की इस कहानी को समझने के लिए हमें अपनी दादियों नानियों के समय को याद करना होगा। उस दौर में महिला की सबसे बड़ी तिजोरी या बैंक क्या था? वह बैंक था उनकी साड़ी के पल्ले की वह मजबूत गांठ। उस पल्ले की गांठ में सहेज कर रखा गया एक रुपया या सिक्का केवल पैसा नहीं था बल्कि संकट मोचक था। वे उसी छोटी सी बचत से पूरे घर की मुश्किलों को आसान कर देती थी। समय बदला और आज आधुनिक युग में हम एक अभूतपूर्व क्रांति देख रहे हैं। आज की नारी के हाथ में भले ही उस तरह का भारी पर्स ना हो, भले ही उसमें नकद पैसे की खनक ना हो, लेकिन उसके हाथ में एक स्मार्टफोन है। आज पल्ले की वह पारंपरिक गांठ डिजिटल वॉलेट में बदल चुकी है। यह बदलाव केवल तकनीकी का नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा और आजादी का है। आज वह अपने मोबाइल से एक क्लिक पर घर का राशन मंगा सकती है, बच्चों की फीस भर सकती है और बिजली का बिल दे सकती है। सबसे बड़ी बात, डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में अब उसे नकद पैसे खोने या चोरी होने का डर नहीं है। वह पूरी तरह सुरक्षित भी है और अपनी मर्जी से बिना किसी पर निर्भर रहे पैसा खर्च करने और प्रतिबंधित करने में सक्षम भी है। चार दीवारी में नारी बंधन में नहीं, अब वह खुली भी है अपनी वैचारिक शक्ति, आत्मविश्वास, साहस और व्यवसायिक व्यवस्थाओं में। अक्सर लोग सोचते हैं कि आधुनिक होने के लिए घर से बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन डिजिटल युग ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। आज भी भारत की लाखों नारियां घर की चार दीवारी के भीतर ही रह रही हैं, लेकिन अब वह चार दीवारी उनके लिए कोई बंधन या जेल नहीं है। अब वह चार दीवारी उनका ग्लोबल ऑफिस यानी वैश्विक कार्यालय बन चुकी है। आज की डिजिटल नारी घर के चूल्हे चौके को संभालते हुए अपने बच्चों के पास रहकर भी अपनी जिंदगी को सफल बनाने में जुटी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने उन्हें एक अद्भुत ताकत दी है। घरेलू उद्योग और ई कॉमर्स के अंतर्गत जो महिलाएं घर पर अचार, पापड़, हस्तशिल्प या कपड़े बनाती हैं, आज वे अमेजन, फ्लिपकार्ट या इंस्टाग्राम स्टोर के जरिए देश विदेश में अपने उत्पाद बेच रही हैं। फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम, कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और ऑनलाइन ट्यूशन के माध्यम से घर बैठे महिलाएं लाखों रुपए कमा रही हैं और अपने परिवार को आर्थिक संबल दे रही हैं। आज हर नारी अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा और सोच को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उजागर कर रही है। भारत के तेजी से बदलते परिदृश्य में हमारी गृहिणियों और माताओं का हुनर अब उनकी आर्थिक स्वतंत्रता की मजबूत नींव बन गया है। इंटरनेट ने दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को भी एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है। घर गृहस्थी में काम आने वाली रसोई की रेसिपी और पारंपरिक व्यंजन अब फूड ब्लॉगिंग के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। सिलाई, कढ़ाई और बुनाई के हुनर को महिलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन बुटीक और ब्रांड में बदल चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही लखपति दीदी जैसी योजनाएं भी ग्रामीण और शहरी महिलाओं को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बना रही हैं। डिजिटल नारी का यह सफर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज में एक नई पहचान दे रहा है। YouTube, Instagram और Facebook जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने उनके हुनर को घर से निकालकर पूरी दुनिया तक

0: दीदी भी बन रही है। वे डिजिटल पेमेंट, बिल भुगतान और बैंकिंग सेवाएं देकर अपने परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। डिजिटल साक्षरता ने महिलाओं को अपनी प्रतिभा को मोनेटाइज करने का पूरा अधिकार भी दिया है। ऑनलाइन क्लासेस और ट्यूटोरियल्स के माध्यम से महिलाएं घर बैठे ही अपने हुनर को दूसरों तक साझा कर रही हैं और लाखों रुपया कमा रही हैं। यह क्रांति इस बात का प्रमाण है कि यदि सही मार्गदर्शन और डिजिटल तकनीक का साथ मिल जाए तो गृहस्थी का हुनर भी एक सफल व्यवसाय बन सकता है। डिजिटल इंडिया की इस उड़ान में नारी शक्ति न सिर्फ अपना घर चला रही है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर रही है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसके हुनर को किसी बड़े शहर, गॉडफादर या बहुत बड़ी डिग्री का मोहताज नहीं होना पड़ा। नारी अपने आप में सक्षम है, सबल है। हमें याद है कि कैसे कुछ समय पहले काचा बादाम जैसे लोक गीतों और साधारण से गानों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। इस डिजिटल लहर ने देश के सुदूर गांवों, कस्बों और छोटे घरों में छिपे छिपे छोटे टैलेंट को सीधे दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वे अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने ला पाए, यह था डिजिटल तकनीक का कमाल। और आज एक साधारण गृहिणी जो शायद कभी किसी मंच पर नहीं चढ़ी, अपने मोबाइल कैमरे के सामने आती है, वह खाना बनाने की विधि साझा करती है, सिलाई कढ़ाई सिखाती है, लोक गीत गाती है, यहाँ तक कि बाल बढ़ाने, काले घने करने के नुस्खे भी बताती है या छोटे छोटे मजेदार वीडियो बनाती है जिन्हें कभी सिर्फ एक होम मेकर और फिजिकल फिटनेस मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देखा जाता था, जाना पहचाना जाता था। उनके इस छोटे से टैलेंट को आज लाखों लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं और इससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। बेशक इस डिजिटल सफर में कुछ चुनौतियां भी हैं। साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग से महिलाओं को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसके लिए डिजिटल साक्षरता और सतर्कता की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन भारतीय नारी इन चुनौतियों से डरने वाली नहीं है, वह सीख रही है, समझ रही है और सुरक्षित होकर आगे बढ़ रही है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्राचीन काल की नारी ने जहां धैर्य और त्याग से घर की दीवारों को मंदिर बनाया, वहीं आज की डिजिटल नारी ने अपनी बुद्धिमत्ता, हुनर और स्मार्टफोन की ताकत से उसी चार दीवारी को पूरी दुनिया से जोड़ दिया है। पूरी दुनिया अब उसके अंदर है और पूरी दुनिया उसके पास है, उसके समीप है, उसके नजदीक है। अब वह अबला नहीं, सबला है। वह घर की लक्ष्मी भी है और अपने डिजिटल साम्राज्य की साम्राज्ञी भी। पल्ले की गांठ से शुरू हुआ यह सफर आज डिजिटल इंडिया की सबसे खूबसूरत और मजबूत तस्वीर बन चुका है। हम नारियों को चाहिए कि आज के आधुनिक युग में, डिजिटल युग में, हम सक्रिय रहें, अपडेट रहें, सशक्त रहें, समझदार रहें, अपनी सुरक्षा और हिफाजत खुद करना सीख जाएं, खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाएं। नारियों की यही शक्ति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इन पंक्तियों से अपनी बात को विराम देना चाहूंगी कि एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। आप सभी ने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।
1: सखियों, अभी हमने सुनी वार्ता, विषय था आधुनिक भारत में डिजिटल नारी। वार्ताकार थी प्रीति दुबे। और अब सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों गीत हमने सुन लिया और आपको पसंद भी आया, हमें पता है आप गुनगुना रही थी। और अब इस चिलचिलाती धूप में, इस जी हाँ पसीने वाली गर्मी में अगर हम अपने रूप निखारने की बात कर लें तो कैसा रहे, आपके मन की बात कर रही हूँ। जी हाँ सखियों, गर्मियों में महिलाओं के रूप लावण्य को निखारने के लिए त्वचा को हाइड्रेटेड रखना सबसे ज़रूरी है और इसके लिए आपको पानी खूब पीना होगा। दिन में 2 बार ठंडे पानी से स्नान भी अगर आप करेंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा है सेहत के लिए। पसीने और चिपचिपाहट से बचने के लिए हमेशा सूती और हल्के रंग के कपड़ों का चयन करें। घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। चेहरे पर ताजगी बनाए रखने के लिए गुलाब जल का प्रयोग करें, इसे ठंडा करके दिन में 2 से 3 बार चेहरे और गर्दन पर लगाएं। चिलचिलाती धूप और गर्मी से आंखों में जलन होने पर जी हाँ इस्तेमाल किए गए ठंडे टी बैग्स या खीरे के टुकड़ों को अपनी आंखों पर रखें। मौसमी फलों का सेवन करें, साथ ही नींबू पानी, नारियल पानी, ठंडी हर्बल चाय पिए और घमौरों से बचने के लिए टैल्कम पाउडर यूज करें, बस आप ताजगी से भरपूर नजर आएंगी। और अब फिटनेस की बात कर ले सखियों। जी हाँ सखियों, योग जो है वो महिलाओं के शारीरिक, हार्मोनल और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। योग मासिक धर्म की समस्याओं, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक तनाव और मेनोपॉज के लक्षणों को कम कर आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। इसलिए सखियों, योग के कुछ लाभकारी आसनों को नियमित करना चाहिए और इसके लिए एक योग्य प्रशिक्षक की सलाह भी लेना चाहिए। जब आप उनके निर्देशन में योग करेंगी ना तो सही करेंगी और स्वस्थ भी रहेंगी। जी हाँ सखियों, नियमित अभ्यास से शरीर में लचीलापन और कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है और इससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी कम हो जाता है। क्या सोच रही हैं, यही ना कि योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करना है। बिल्कुल करिए और स्वस्थ रहिए और हमारे साथ गीत सुनते सुनते गुनगुनाइए भी।

जी हाँ सखियों, यदि आप यात्रा का मन बना रही है तो हमारा गुड लक साथ में लेकर जाएं, क्योंकि यात्रा के दौरान सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जी हाँ सखियों, महिलाओं के लिए यात्रा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए यात्रा के दौरान सुरक्षित रहने के लिए हमेशा अपनी मंजिल की पहले से योजना बनाएं। अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा न करें और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अपने मोबाइल में 112 या 1091 जैसे पुलिस हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार राष्ट्रीय हित महिला हेल्पलाइन को अवश्य सेव करें। साथ ही यात्रा पर निकलने से पहले उस जगह के मौसम, संस्कृति, ठहरने की जगह और स्थानीय परिवहन के बारे में पूरी जानकारी जुटाएं, स्वयं को अपडेट रखें और सुरक्षित यात्रा करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हाँ, यात्रा के दौरान गीतों का भी आप आनंद लें। तो चलिए सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों जाना तो पड़ेगा, समय इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आपको बता दें, इस रोचक मधुर कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ेदार ने। अब दुर्गेश नंदिनी को दें अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोपाल से, प्रतीक्षा करें।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं संगीता उपाध्याय। पहले सुनते हैं इनसे ईसुरी चौघड़िया।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे संगीता उपाध्याय के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है। कलाकार हैं नंद कुमार जैन। पहले सुनते हैं इनका गाया ये भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा।
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
7: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
8: क्या?
7: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
8: वो कैसे?
7: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
8: पर सुनेंगे कैसे?
7: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

आप सुन रहे हैं आपकी आकाशवाणी, ये प्रसारण हो रहा है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अनपढ़ फिल्म से हमने लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा, संगीत मदन मोहन का।

0: कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है, साहिल लुधियानवी की शब्द रचना संगीत जयदेव का। इस गीत को हमने लिया हम दोनों फिल्म से।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

हम दोनों फिल्में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को। गीत लिखा था साहिल लुधियानवी ने, संगीत जयदेव का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम कुछ और फिल्मी नगमे आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश, सुनना ना भूलें।

0: मीडियो वेव 188.3 मीटर्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रोड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। इस बातचीत में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, फार्मास्यूटिकल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम पहले से ही वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर रायसेन जिले की प्रेमा मेहरा ने अपनी कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
1: मैं सन 2017 से ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी। आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही

नहीं होता, रख रखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपये का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने की तैयारी एक कदम और आगे बढ़ गई है। कल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब यह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेज दिया गया है। हालांकि कार्य परिषद सदस्य डॉ ताहिरा अब्बासी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह नाम स्वतंत्रता सेनानी बरकतुल्ला भोपाली की स्मृति से जुड़ा है और इसे बदला जाना उचित नहीं है। नाम परिवर्तन के लिए अभी विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित कराना और राज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी होगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की चेतावनी भी है। वहीं कल रतलाम 42 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। मानसून इस बार सामान्य से देरी से यानी 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच के ग्राम खातीखेड़ा में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर ने ग्रामीणों से रूबरू होकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को मुख्य आयोजन गैरिसन ग्राउंड ग्वारीघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान पर किया जाएगा। शिवपुरी में इफको कंपनी की डीएपी रैक के माध्यम से 1370 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध हुई है, जिसका ई विकास प्रणाली से वितरण किया जाएगा। आगरमालवा में कल 2 नवीन वाहनों को पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया। इस मौके पर एसपी दिलीप कुमार सोनी ने कहा कि इससे जिले में नियमित गश्त, विशेष अभियान एवं आपात स्थितियों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी। झाबुआ में जलगंगा संवर्धन अभियान के दूसरे चरण में जल स्रोत सेवा समागम के तहत प्रस्फुटन ग्राम भोयरा में सुरक्षित जल समृद्ध कल विषय पर जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है।

0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है। इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उनपे भी एक

0: कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट से कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
3: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
4: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक

0: ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। आपकी पसंद का पहला गीत हम लेकर हाजिर हैं हीरो पंती फिल्म से। मुस्तफा जहीद ने इस फिल्म को गाया है। कौशर मुनीर की शब्द रचना, संगीत मुस्तफा जहीद का। सुना चाहा है बठिंडा पंजाब से। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से पत्राया। रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया का।

अगला गीत हमने लिया सत्यमेव जयते फिल्म से। इसे सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी दुबिहा नेवादा गाजीपुर से पतराया, प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल का। इसी गीत की फरमाइश भेजी आनंद कुमार कामले, रेखा राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने। सत्यमेव जयते के इस फिल्म के इस गीत को गाया है जरा के खान ने, तनिष्क बागची का गीत और संगीत है। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत सुना जा है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साविर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। ये फरमाइश करता है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी और करिश्मा गौरी नगर इंदौर से। सपना संगीता रोड इंदौर से ही पत्र है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया का। इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा है उदित नारायण और पूर्णिमा का गाया हुआ, समीर का लिखा, आनंद बख्शी का संगीतबद्ध किया, माफ कीजिए आनंद मिलिंद का संगीतबद्ध किया हीरो नंबर 1 फिल्म का गीत।

गीत संगीत और गायक कलाकार हैं करण औजला। फिल्म का नाम बैड न्यूज़। इस गीत को सुनना चाहा बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा का, फिर शंकरलाल राहुल कुमार सविता स्वाति एवं पूरा माखीजा परिवार। औरंगाबाद से पत्राया राजेश साबले, राजदीप राजेश राजी राशि और शीतल राजेश का।

0: एक लड़की थी दीवानी सी, एक
1: लड़के पे वो मरती थी। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी फरमाइश का मोहब्बतें फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का है। सुनना चाहा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन, आदर्श नगर मलोट पंजाब से पत्राया राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा का। तो आइए आपको सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का मोहब्बतें फिल्म का गाना।

कार्यक्रम का अंतिम गीत तुम मिले फिल्म से है, आवाज़ है के की। सईद कादरी के बोल हैं, संगीत प्रीतम का है। सुना चाहा है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। भाटापारा दत्तरेंगी छत्तीसगढ़ से पत्राया द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक, झावेंद्र कुमार। यहीं से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, सूरज, ज्योति और रियांश का।

0: के आवाज़ में गाए तुम मिले फिल्म के इस गाने के साथ ही आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रॉड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार EV से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं आज शाम 5:33 और शाम 6:30 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल से ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा 7:21 पर, जिसमें आज आप सुन सकते हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों के समय का सदुपयोग, इस पर सामयिक चर्चा। इसके अलावा बुंदेली समाचार और लोकगीत। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा, इसका प्रसारण होगा आज रात 8:00। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे 8:35 पर और रात 9:30। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:42 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। कलाकार है संगीत।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी इंदौर है। शाम के 5 बजे ही हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, शाम की इस प्यारी सी मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और मैं हूँ तनिष्का।
1: और मैं हूँ काजल। और आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए आज का स्पेशल सेगमेंट गीतों भरी कहानी, जिसमें हम आपको सुनाएंगे एक सुंदर सी कहानी और उसी के साथ साथ सुनेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर से गीत। पर रोजाना की तरह आप जल्दी से हमारे आज के प्रश्न नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किस पोषक तत्व की कमी से अनिद्रा यानी कि नींद ना आना या फिर नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
0: और आज का दूसरा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी को उदासी और डिप्रेशन जैसे लक्षणों से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए और तब तक सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, आज के स्पेशल सेगमेंट से पहले हम एक जरूरी विषय पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो हमें दुनिया भर के बच्चों की सेफ्टी और उनके राइट्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और ये है आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है।
4: दोस्तों, बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय माना जाता है, लेकिन दुनिया में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो हिंसा, युद्ध, शोषण और उत्पीड़न का शिकार बन जाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य ये है कि ऐसे बच्चों की तकलीफ को स्वीकार करना और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
3: संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड दुनिया की सबसे व्यापक रूप से स्वीकार की गई मानवाधिकार संधियों में से एक है। इसके बावजूद भी आज भी कई बच्चे युद्ध और संघर्षों की मार झेल रहे हैं।
4: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार बच्चों के खिलाफ होने वाले 6 गंभीर उल्लंघनों में बच्चों की हत्या या उन्हें गंभीर रूप से घायल करना, उन्हें बाल सैनिक के रूप में भर्ती करना, यौन हिंसा, अपहरण, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले तथा बच्चों को मानवीय सहायता से वंचित करना शामिल है।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा जारी रिपोर्ट्स में ऐसे कई पक्षों की पहचान की गई है जो बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इन रिपोर्ट्स का उद्देश्य दुनिया का ध्यान इस पर गंभीरता से आकर्षित करना है।
4: दोस्तों, वर्ष 2030 के सतत विकास एजेंडा में भी बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने का विशेष लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य 16.2 में बच्चों के शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करने पर जोर दिया गया है।
3: इस दिन को मनाने की शुरुआत 1982 से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संघर्षों और आक्रामकता के कारण प्रभावित बच्चों की स्थिति को देखते हुए इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था, और तभी से ये दिन बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए वैश्विक जागरूकता का एक प्रतीक बना है।
4: आज ज़रूरत है कि हम अपने आसपास के बच्चों के प्रति संवेदनशील बने। यदि किसी बच्चे के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार या शोषण हो रहा है तो चुप ना रहें, उसकी सहायता करें और संबंधित अधिकारियों तक जानकारी पहुंचाएं।
3: याद रखिए दोस्तों, हर बच्चे को सुरक्षित वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। बच्चों की मुस्कान ही हर समाज की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
4: तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम संकल्प लें कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और हिंसा मुक्त बचपन के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
3: तो चलिए, आइए अब कार्यक्रम का रुख बदलते हैं इस गीत के साथ।

0: तो आइए दोस्तों, अब बारी है आज के स्पेशल सेगमेंट गीतों भरी कहानी की। आज की कहानी है दो सहेलियों की, जिनका नाम है कंचन और इशिता। तो आइए शुरू करते हैं। तुम नहीं आ रही हो? कंचन ने पूछा।
1: नहीं, इशिता ने कहा।
0: ये जवाब सुनते ही कंचन का मन उदास हो गया और उसने बात खत्म करते हुए कहा, तो ठीक है, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया।
1: कंचन और इशिता बचपन से दोस्त हैं और उनकी दोस्ती थी भी बहुत गहरी। साथ आना जाना, घूमना फिरना, पढ़ना और घंटों बातें करना, ये सब उनका डेली रूटीन था। दोनों अब तक अपने जीवन के हर पड़ाव में साथ ही रही हैं।
0: पर जब से कंचन की जॉब लगी और वो देवास से इंदौर शिफ्ट हुई, तब से इस लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप में बातचीत का सिलसिला जैसे थम सा गया, और अगर बात होती भी तो बस फॉर्मेलिटी भर की।
1: फोन रखते ही इशिता पढ़ाई में लग गई और कंचन इस सोच में कि कैसे सब कुछ पहले की तरह जल्दी से जल्दी हो जाए।
0: उससे वो पुराने दिन याद आने लगे, जब वो साथ में मिलते थे, बातचीत करते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। वो बातें उसे याद आने लगी, वो पल उसे याद आने लगे और फिर वो उन्हीं सपनों में, उन्हीं बातों में खो सी गई।

0: और इसके बाद कंचन ऑफिस पहुंची और अपने काम में व्यस्त हो गई। बीच में जब भी उसे समय मिला उसने इशिता को आई मिस यू का मैसेज डाला, पर जब कोई जवाब नहीं आया तो वो फिर से उदास हो गई।
1: मेरी जॉब पहले लग गई है तो क्या मेरी ही जिम्मेदारी है सब कुछ ठीक करने की? और अगर मैं कोशिश करती भी हूँ तो कम से कम इशिता जवाब तो दे ही सकती है, ढंग से बात तो कर ही सकती है। पर नहीं, मैडम तो अलग ही दुनिया में है आजकल।
0: फिर जैसे उसे याद आया कि अलग ही दुनिया में तो वो भी हुआ करती थी कुछ समय पहले तक, जब उसे नौकरी लगने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे थे। लग रहा था मानो इतने दिनों की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी और वो कभी सफल हो ही नहीं पाएगी।
1: तब कैसे इशिता उसे समझाया करती थी, पूरे समय उसे मोटिवेट किया करती थी। वो कहती थी, खुद पर भरोसा रखो कंचन, तुमने मेहनत की है तो तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी।
0: और आखिरकार जब उसे इंदौर में पोस्टिंग का लेटर आया तो ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो बहुत खुश थी, साथ ही इशिता भी उसके लिए खुश थी। लेकिन कंचन से बिछड़ जाने का दुख और खुद असफल होने का भाव उसके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रहा था।
1: और वो भी अब इस बात को समझती थी, इसलिए जब से इंदौर आई उसने इशिता से कांटेक्ट में रहने की हर संभव कोशिश की। और आज तो उसने तय किया कि वो अपने पूरे एफर्ट्स डालकर अपने इस प्यारे से रिश्ते को ठीक करके ही दम लेगी।

0: फिर उसी शाम घर पहुंचते ही सबसे पहले कंचन ने इशिता को फोन लगाया। हालचाल पूछने के बाद अपनी बात शुरू की। मुझे तुमसे कुछ कहना है, कंचन ने दृढ़ होकर कहा।
1: हाँ बोलो, इशिता ने कहा।
0: हमारी दोस्ती को कितना समय हो गया है, हमने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, पर तुम्हें ऐसे उदास तो शायद ही कभी देखा होगा। तुम तो किसी भी परिस्थिति में हमेशा खुश रहती हो। माना ये समय थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, पर अगर हम साथ हैं तो ये समय बीत जाएगा।
1: इशिता ने कहा।
0: जहाँ इतने समय पेशेंस रखा है, थोड़ा समय और फिर सब कुछ जल्दी ही ठीक होगा। सामने से कोई जवाब न मिलते देख कंचन ने अपनी बात जारी रखी। और अगर वहाँ अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं तुमसे कब से कह रही हूँ, थोड़े समय मेरे पास आकर रहो। हम पहले भी साथ रह चुके हैं, कंफर्टेबल भी है साथ रहने में, तो दिक्कत क्या है तुम्हें?
1: अब पहले जैसी बात नहीं रही। तब हम पढ़ने गए थे और अब तुम्हारी जॉब है। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती, ना ही चाहती हूँ कि कोई ये कहे कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है, इशिता ने कहा।
0: कैसी बात कर रही हो इशिता, अगर तुम ऐसे कहोगी तो क्या मतलब इतने सालों की दोस्ती का, हमारी अंडरस्टैंडिंग का? ठीक है तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, पर ऐसे तो मत कहो। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है और तुम मुझ पर कोई बोझ नहीं हो। और ये समय तो है ही साथ देने का, क्योंकि आज नहीं तो कल जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगी तो यही दिन याद करोगी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त उस समय मेरे साथ थी जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे मैं याद करती हूँ मेरा पुराना समय, जब तुमने मेरा साथ दिया था, मुझे सहारा दिया था, मेरी मदद की थी। और आज इस समय जब तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो फिर मैं तुम्हें अपने से अलग कैसे कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ इशिता? बताओ तुम मुझे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दे पाऊँगी? कंचन ने लगभग नाराज होते हुए इशिता से ये सब कहा।
1: अरे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, बस मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी कि अभी तुम्हारी नई नई जॉब लगी है, तुम नई नई जगह पर एडजस्ट कर रही हो, ऐसे में तुम्हें परेशान करना सही नहीं होगा। ये कहते वक्त इशिता की आंखों में आंसू थे।

0: कंचन इशिता से अपनी बात जारी रखती है। वो कहती है, मैं क्या तुम्हारी रिश्तेदार हूँ जो तुम इतना सोच रही हो? मैंने कभी तुमसे कुछ भी कहने से पहले सोचा ही नहीं कि तुम परेशान तो नहीं हो गई। मैंने तो बस कह दिया जो भी मेरे मन में आ रहा था। और इशिता, यही तो फायदा होता है दोस्ती के रिश्ते का, कि हम बिना सोचे समझे, सही गलत जाने, जो भी होता है बस अपनी बात कह सकते हैं। देखो, मैं तुम्हारी जितनी समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि बात करने से परेशानी बढ़ती नहीं है, बल्कि परेशानी का हल निकलता है। कंचन ने इशिता को बहुत प्यार से समझाया।
1: हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, मेरी गलती है, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी। जो भी मैं महसूस कर रही थी, हर बात जो भी मेरे मन में थी कह देनी चाहिए थी, जैसे मैंने हमेशा तुमसे उम्मीद की है। इशिता की आवाज़ में ठहराव बता रहा था कि शायद वो इतने दिनों से यही सुनना चाहती थी।
0: मैं तो हर बात सही ही कहती हूँ, कंचन ने इतराते हुए कहा, और दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी हंसी में एक सुकून था जो बता रहा था कि कैसे एक पहल, एक संवाद ने पूरे रिश्ते को संवार कर पहले जैसा बना दिया। और दोस्तों, ये थी आज की हमारी गीतों भरी कहानी। कितनी खूबसूरत बात है ना काजल, ये कि एक संवाद, एक कम्युनिकेशन इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को आराम से ख़त्म कर सकता है।
1: बिल्कुल, और हमेशा से यही कहा गया है, और हमारे बड़े बुजुर्ग, सारे एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द की। कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों के, जो भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, या फिर बच्चों और माता पिता का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, पर दोनों के ही मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, बहुत सारा एक समंदर बन चुका होता है बातों का और भावनाओं का, पर हम बस बोल नहीं पाते हैं, और वो जो समंदर है, वो उसकी जो लेवल है उसका, वो बढ़ता चला जाता है, बस फिर पर एक बात, एक मन की बात जब बाहर आ जाती है और हमें ये लगता है कि उसने सुन और समझ लिया है, तो सारा का सारा समंदर जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है और सब ठीक हो जाता है।
0: बिल्कुल, वो एक संवाद, एक पहल करने की ज़रूरत होती है, दोनों में से किसी एक को आगे आना पड़ता है और अपनी बात रखनी पड़ती है, और फिर जो रिश्ता होता है उसी खूबसूरती के साथ वापस अपनी जगह लौट जाता है, और फिर खुशियों से पूरा माहौल भर जाता है।
1: और दोस्तों के मामलों में तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ही होता है, जैसे

0: हमने इशिता और कंचन की कहानी देखी और पढ़ी अभी। दोस्तों में तो आजकल ऐसा होता ही है कि दोनों की जॉब्स अलग अलग शहरों में लग जाती हैं और फिर उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। दोस्ती जो है वो डिस्टेंस दोस्ती में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं अपने अपने बिजी स्केड्यूल्स की वजह से। पर शायद वहाँ पर बस एक यही चीज़ ज़रूरी होती है कि हम उन्हें बता दें कि हम उनके लिए हर वक्त मौजूद हैं, और जब नहीं है तब शायद काम की वजह से, पर हमारा जो बॉन्ड है अभी भी पहले की तरह है।
1: बिल्कुल, जैसे एक छोटा सा आई मिस यू का मैसेज जो सेंड किया था वो ही एक बड़ी बात बन जाती है कि हाँ कोई तो है जो हमें याद रख रहा है।
0: और साथ ही ये भी कि तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, तुम मेरी दोस्त हो और मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहाँ पर रहूँगी जहाँ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी।
1: बिल्कुल,
0: और इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और कुछ हो भी नहीं सकती है शायद।
1: बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो कि दोस्ती पर है।

0: क्या बात है, मजा आ गया ये गीत सुनकर। तो अब श्रोताओं जल्दी से वक्त आ चुका है कि हम आपको आज के प्रश्नों के उत्तर बता दें। तो हमारा पहला प्रश्न ये था कि किस पोषक तत्व की कमी से अनिद्रा यानी कि नींद ना आना या नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, तो उसका उत्तर है मैग्नीशियम।
1: और आज का दूसरा प्रश्न ये था कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी को उदासी और डिप्रेशन जैसे लक्षणों से जोड़ा जाता है, तो इसका उत्तर है विटामिन डी।
0: और इसी के साथ क्योंकि हमें खुश रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपके लिए एक और गीत हाजिर है।

0: तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आया है तो हमारे ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है airindore.in@gmail.com।
1: इसी के साथ आप हमें ढेर सारी चिट्ठियां भी लिख सकते हैं आकाशवाणी इंदौर केंद्र के पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा, कार्यक्रम प्रमुख, आकाशवाणी मालवा हाउस, इंदौर। हमें आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार होता है।
0: तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने एक बहुत ही ज़रूरी पहलू पर बात किया और हमारी कहानी भी केंद्रित थी दोस्ती के ऊपर और कैसे एक दोस्त जो होता है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। हमारी दिन भर की जो स्ट्रेस होती है, थकान होती है, हम कुछ बातें, चंद बातें करके अपने दोस्तों से अपना मन हल्का कर लेते हैं और वो इस दुनिया में, आजकल कितनी स्ट्रेसफुल दुनिया में, कितना ज़रूरी होता है ना काजल?
1: बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सिर्फ छोटी छोटी बातें नहीं, वो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में भी हमारी मदद कर देते हैं। और कई दोस्त तो इतने प्यारे होते हैं कि वो आपको अकेला नहीं छोड़ते। जब वो आपको परेशान देखते हैं तो कहते हैं, तू चल आ जा मेरे पास जल्दी, अभी के अभी।
0: बिल्कुल। और हमें उनसे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है। हम थोड़ी बात कर लेते हैं, अपना दिल हल्का कर देते हैं, थोड़ी बहुत गॉसिप कर लेते हैं और हमें एनर्जी मिल जाती है, हम रिचार्ज हो जाते हैं आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करने के लिए।
1: और उससे भी प्यारी बात यह है कि फ्रेंडशिप बहुत लो मेंटेनेंस होती है, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। अगर एक साल पहले भी बात हुई हो और आज हमने फ़ोन किया हो अपने दोस्त को, तो बात वहीं से शुरू होगी जहाँ पर ख़त्म की गई थी।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसी फ्रेंडशिप है जो रुकी हुई है, तो उसे प्लीज़ आज याद कीजिए, उन्हें एक छोटा सा मैसेज कीजिए और अपनी इस दोस्ती को एक और चांस दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अनुमति दीजिए तनिष्का
1: और काजल को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी, ये आकाशवाणी इंदौर है। फिल्म संगीत लीजिए, इस कार्यक्रम में सुनिए आशा भोसले की आवाज में जयदेव का लिखा गीत। फिल्म का नाम है मुझे जीने दो।

संस बतिया न लो शाम पैया करूं।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी की रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है जीने की राह।

अभिमान, ये है फिल्म का नाम। आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, बोल मजरूह के, संगीत SD बर्मन का।

0: दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी,
2: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आए।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
2: जी,
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
2: जी,

0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
1: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओ, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
1: जी,
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
1: जी,
0: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं, ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
1: जी
0: जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
1: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ हाँ जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है, जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहां गए थे, मैग्नेटिक हिल,
1: बिल्कुल याद है।
0: जहां यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो
1: जी
0: वो खिसकने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: अजीत जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
0: हाँ हाँ
1: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहां पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहां अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहां की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है, वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है।
1: जी
0: इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
1: जी
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहां की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
1: जी
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित। इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
4: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through to big one. It's a huge.

0: goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
1: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
2: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
1: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
3: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
4: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ, शाबाश।
5: क्या अभी आपके पास समय होगा?
4: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
3: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
4: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
5: जी वही।
3: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
4: अच्छा।
5: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
4: और
3: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
4: हाँ, बोलो।
5: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
4: बिल्कुल।
3: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
4: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
5: 5000 वर्ष पहले?
4: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
3: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
4: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
5: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
4: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
5: अच्छा।
4: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
5: जैसे?
4: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
5: वैदिक समूह?
4: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
5: भरत?
3: भरत नाम तो हमने सुना है।
4: अच्छा, भाई भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
5: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
4: हाँ।
5: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
4: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
5: अच्छा।
4: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
3: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
4: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
5: वो क्या सर?
4: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
3: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
5: भला ऐसा क्यों?
4: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा

0: है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
1: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
0: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
1: अच्छा, कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
0: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
1: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
1: बिल्कुल,
0: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
1: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
0: अच्छा
1: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
0: अच्छा
1: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
0: वो क्या?
1: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
0: जम्बूद्वीप?
1: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
0: जम्बूद्वीप?
1: हाँ,
0: ये नाम भला क्यों?
1: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
0: अच्छा
1: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
0: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
1: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
0: इतने सारे देश?
1: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
0: अच्छा सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: ये नाम कैसे आए?
1: लगता है सब कुछ जानकर ही मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
0: जी सर।
1: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
0: अच्छा
1: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
0: ओ।
1: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
0: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
1: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
0: ओ,
1: हाँ,
0: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
1: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
0: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
1: हाँ?
0: और हिंदुस्तान?
1: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
0: अफगानिस्तान।
1: बिल्कुल सही।
0: बलूचिस्तान।
1: सही।
0: तुर्किस्तान।
1: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
0: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
1: अच्छा?
0: हाँ, बिल्कुल।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
0: अच्छा
1: हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
0: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
1: बहुत अच्छे, तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
0: जी सर।
1: शाबाश। अच्छा, आज

0: वो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश
3: भारत अर्थात इंडिया
2: के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है
3: भारत अर्थात इंडिया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
5: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
6: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
7: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
8: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
9: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
8: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
9: हाँ पूछो बेटा।
8: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
9: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
8: लेकिन माँ,
9: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
8: जी,
9: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
8: अच्छा माँ, ये लो माँ।
9: ला।
7: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
8: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
9: क्या मिल गया
8: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
9: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
8: मुझे मिल गया।
7: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
9: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
8: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
7: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
8: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
9: कुछ भी तो नहीं।
7: कुछ भी तो नहीं है।
8: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
7: वो तो है मगर
8: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
7: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
8: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
7: हाँ
8: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
7: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
8: ठीक है, आओ मेरे साथ।
9: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो। और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो

0: लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
1: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
2: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
3: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
2: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
3: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
2: आओ यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
4: ना जाने क्या करेंगे,
3: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं सकती।
4: अच्छा मजा आ गया, लगता है कुछ हो गया है।
3: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
2: भाई साहब हट जाइए। आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
3: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
2: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
3: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
2: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
3: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
2: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
3: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे वाह,
2: मान गए, कमाल कर दिया बच्चों ने।
3: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
4: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
3: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
4: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
3: अरे शाबाश, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
4: वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा, उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ, उधर देखो।
3: अरे अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
0: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग, ये आकाशवाणी इंदौर है। सुगम संगीत लीजिए, सुगम संगीत की इस कार्यक्रम में सुनिए ए हरिहरन की आवाज में ये रचना।

ए हरिहरन की आवाज में गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: लीजिए इस कार्यक्रम में सुनिए प्रभुलाल मालवीय और साथियों का गाया ये मालवी लोकगीत।
1: ए जी संत मिल

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और लोक संगीत के इस कार्यक्रम में प्रभुलाल मालवीय और साथियों की आवाज में ही हम आपको सुनवाते हैं एक और मालवीय लोक रचना।

प्रभुलाल मालवीय और साथियों की गाई इस मालवी लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है। श्रोताओं, 7 बजा चाहते हैं समाचार, अब हम दिल्ली से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेन्द्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज ने कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरूआत केवल एक नए वाहन की शुरूआत नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत हैं आज की सभा के शेष कार्यक्रम और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रम।

आज रात 10 बजे प्रादेशिक लोक संगीत एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम दिल्ली से रिले करेंगे।

फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन भवन आप सुन सकते हैं रात 9:30 बजे से। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम होगा रात 8 बजे।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में, यानी 7:20 से। ये थे श्रोताओं आज की सभा के शेष कार्यक्रम, और लीजिए अब सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुधाकर देवले का गाया राग श्याम कल्याण, इन्हीं का गाया राग नट भैरव हम आपको सुनवाएंगे 9:30 बजे। आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम मन भवन आप सुन सकते हैं 9:30 बजे। खेती की बातें, ये कार्यक्रम होगा 6:35 पर। इसमें कल आप सुनेंगे फूल पौधारोपण की तैयारियां।

हर रोज की तरह किसान भाई अपना मनपसंद कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनेंगे शाम 7:20 पर। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 8 बजे से। सुगम संगीत में शाम 6:30 बजे कल के कलाकार होंगे वारसी बंधु, इन्हीं के गाई रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:15 बजे। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत होगा शाम 6:45 पर, इसमें कल के कलाकार होंगे भाई राम गप्पू जी, इन्हीं की गाई लोक रचनाएं आप सुबह 9 बजे भी सुन सकते हैं। शाम 6 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: युवावाणी युवा साथियों का ये मनपसंद कार्यक्रम हर रोज की तरह आप सुनेंगे शाम 5 बजे। सुबह 7:20 पर होगा इंदौर परिक्रमा, 8:30 बजे, जी हां सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे ईश्वरी रावल, आशुतोष दुबे, उत्पल बैनर्जी। सुबह 10:05 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये थे श्रोताओं कल के मुख्य कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी इंदौर है, 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000,

0: सब्जियों के 2000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात कर ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल गुजरात और दमन दौरे पर 21,500 करोड़ रूपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को जनजातीय क्षेत्रों में उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए और इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक भंडार मौजूद है। इसके अलावा खनन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन क्षेत्र का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी जारी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी।
1: आई विल रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन्स,
2: मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूं कि वे ऊर्जा की बचत करें और उसका सोच समझकर उपयोग करें। सरकार पेट्रोल, डीजल और LPG के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए घबराहट में इनकी जरूरत से अधिक खरीदारी या बुकिंग ना करें। साथ ही लोगों से अनुरोध है कि वे PNG, इंडक्शन स्टोव और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों और साधनों का भी उपयोग करें।
1: इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता एक मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। राज्यपाल ने प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में माताओं और बच्चों को सिकल सेल के कारण, लक्षण और उपचार की जानकारी देने के लिए भी कहा है। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका देशों के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और IT क्षेत्र में निवेश और व्यापार के अवसरों पर भी चर्चा होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair

0: वी के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। खरगोन के लिए 16 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनेगा। जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इच्छुक कर्मचारी 3 से 8 जून तक EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 15 कार्यालयों का चयन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की शुभा खाड़े ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
1: मैं 7 साल से आजीविका मिशन में जुड़ी हूँ। वर्तमान में मैं बैंक सखी का कार्य कर रही हूँ। फिर मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी, अब आजीविका मिशन में जुड़ने के कारण मैंने जो जनरल स्टोर की दुकान खोली है उससे मुझे अच्छी इनकम हो जाती है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है।
0: मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण में मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 8,317 आवेदकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 18 जून को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपये का यह पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। उज्जैन की 12वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा कुशवाहा ने मात्र 22 मिनट में चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पर अपना नाम दर्ज कराया है। 8 मिलीमीटर आकार की इन दालों पर सूक्ष्म कला का यह कमाल दीक्षा ने महज 1 साल की मेहनत से हासिल किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर दीक्षा को बधाई दी है। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर बद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस यादे बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रख रहे हैं। थोड़ी देर में अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा जिसमें देशभर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं को भी सावधान किया है कि मानसून में हवा में नमी के कारण करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है और घर में मजबूत अर्थिंग का होना जरूरी है। अब रुख करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। बीते 24 घंटों में 29 जिलों में आंधी बारिश और कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। श्योपुर में सबसे अधिक 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई और कई इलाकों में जलभराव हो गया। राजधानी भोपाल में रात भर बारिश का दौर चला है और सुबह भी बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने आज नीमच के ग्राम खेमला में निर्माणाधीन ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल में विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए संपर्क अभियान के तहत खंडारा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। खंडवा शासकीय आईटीआई में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में 265 युवाओं का विभिन्न कंपनियों के लिए चयन किया गया। नर्मदापुरम जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पचमढ़ी के छावनी झील पर सफाई और जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के द्वारा आज किरण बाल गृह कटनी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगरमालवा जिले के सुसनेर में 5 से 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत राजगढ़ के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला अपना सगला किसान भाई बहन के तमारी बेन मनीषा शर्मा की प्रेम भरी राम राम। भाई बहनों, एक बात तो तुमने सुनी होगी, मालव माटी गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। बात तो बिल्कुल सही है कि अपना मालवा की माटी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ जहाँ देखो वहाँ अनाज खूब मात्रा में उगतो दो। पर अब समय का साथे साथे कुछ बदलाव हो रहा है और उन्हें माटी का बारामज बात करने के लिए आज अपन आज की बात में करांगा। अने माटी की बात करांगा अपन सॉइल हेल्थ कार्ड का से जुड़ी हुई। भाई बहनों, मिट्टी घनी उपजाऊ है अने इसकी उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए अपने सॉइल हेल्थ कार्ड को सहारो लेना पड़ेगा। सॉइल हेल्थ कार्ड वो है जो अपने बतावे कि अपनी मिट्टी में कौन सा तत्व की कमी है या अधिकता है, उसका हिसाब से अपन जो भी अपने फसल बोनी है उसको चयन करो। क्योंकि अपने मालूम पड़ जाए कि यदि अपना जो पोषक तत्व अपनी फसल के लिए जरूरी है वे अपने मिल जाएगा और उसका हिसाब से अपन खाद भी डालेंगा, तभी तो अपनी मेहनत को सही फल अपने मिलेगो और अच्छा उत्पादन होवेगो। भाई बहनों, अपना मालवा की काली मिट्टी भगवान की देन है, पर पिछला 40-30 साल से एक प्रकार की खाद डाली डाली के अपन ने की उपजाऊ क्षमता में कुछ कमी जरूर करी दी है। अने सॉइल हेल्थ कार्ड अपना शरीर की जांच की तरह होवे है, या यूं कहूं कि अपने बालक की परीक्षा का परिणाम की तरह होवे है, जिसमें कि अपने पता पड़ जाए कि अपनो बच्चों जो है कौन सा विषय में कमजोर है आना को अपन अच्छी तैयारी करावा। वैसे अपनी मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व की कमी है या उसके अपने बाहर से पूर्ति करनी है या बात अपने पत्तों पड़ जाएगी तो अपन डालांगा और निश्चित तौर पे अच्छे उत्पादन पावांगा। भाई बहनों, मिट्टी परीक्षण कार्ड से किसान भाईना के लागत में भी कमी होगी, क्योंकि गिनिया चुनिया या फिर अंधेरा में तीर चलाने की तरह जो किसान भाइयों ने खाद उन डाल दे, पर यदि मिट्टी में वो खाद या वो पोषक तत्व पहला से उत्पन्न रहेगो तो खाद होकर नहीं डालना पड़ेगो तो खर्चो भी कम होवेगो और मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधरेगी। और मिट्टी की गुणवत्ता मतलब उपज में वृद्धि, सब तरह से हुआ नहीं किसान भाई कुछ फायदो। सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना भी घणो आसान है। कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र की टीम के बुलाओ, वो तुम्हारे खेत में आवेगी, मिट्टी को नमूनो इकट्ठो करेगी और फिर इना मिट्टी का नमूना के किसी भी मान्यता प्राप्त लेब में जांच करवे के आपके रिपोर्ट तैयार करके कार्ड बना के दी देगी। अने इना कार्ड में आपकी मिट्टी से जुड़ी हुई सगली जानकारी उमें होवेगी। अने उका हिसाब से अपनो फसल को चयन और खाद को चयन अपन करांगा तो अच्छो मुनाफो पावांगा। अने आप यो भी सवाल मन में ही होगो कि तुम्हारे मिट्टी को परीक्षण करवाना है तो कैसे कराओगा। भाई बहनों, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकता है या फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल पे जाके अपनो आवेदन आप अपना घर से फोन से भी कर सकता है। भाई बहनों, बड़ो आसान तरीको है और बड़ो लाभदायक है, तो मिट्टी परीक्षण करवाओ और सॉइल हेल्थ कार्ड बना के अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के और बढ़ाओ। आने अपन भी आगे कार्यक्रम के बढ़ावा और सुनाए लोकगीत जिगाए भाई ओम प्रकाश सोमानी और साथी ने।

0: भाई बहनों देखो, आपका बारिश को मौसम नजदीक ही दिख ही रही है। आने सब तैयारी कर रहा है अपने सोयाबीन की बोनी की। आने सोयाबीन की बोनी करने से पहला अपना बीज की देख ले भाल तो कर लो कि अपने किस तरह को बीज कर बोनो है, कौन कौन सी किस्म को चयन करना है, यह जानकारी सबसे पहला तुम ले लो। आने यह जानकारी तुम्हारे देगा कौन देगा? डॉक्टर आलोक शिव, वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। यह तुम्हारे बताएगा कि सोयाबीन को किस्म को चयन अपन किस तरह से करा। तो सुना अपन यह वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर आलोक शिव, वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में कार्यरत हूं। और आज की इस परिचर्चा में मैं आपको सोयाबीन की किस्मों का चुनाव कैसे करूं इस पर प्रकाश डालूंगा। साथियों, ये संज्ञान में आया हुआ है कि किसान भाई जानकारी के अभाव में पुरानी किस्में ही लगाते हैं, जिनके कारण उन्हें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे

0: किन किस्मों का चुनाव किया जाए तथा उनका बीज जो है वो कहाँ से प्राप्त करें। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष अलनीनो की संभावित स्थिति है और इस स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को यह सलाह है कि वो सोयाबीन की किस्मों के चयन में शीघ्र या मध्यम समयावधि से पकने वाली किस्मों को प्राथमिकता दें। शीघ्र किस्में 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं तथा मध्यम समयावधि में पकने वाली किस्में 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। अलनीनो की इस स्थिति को देखते हुए ऐसा ज्ञात होता है कि इस स्थिति में सूखे तथा कीट या रोग के अधिक प्रकोप की संभावना है, इसलिए किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि वे 2 या 3 किस्मों का चुनाव करें। जनरली ये देखा जाता है कि वे केवल एक ही किस्म का चुनाव करते हैं, इसलिए इस स्थिति को देखते हुए 2 या 3 किस्मों का चुनाव करना चाहिए। साथ ही हमारे मालवा क्षेत्र में की बात करी जाए तो कुछ किसान ऐसे हैं जो सोयाबीन के बाद आलू, प्याज और लहसुन जैसी फसलों को लेकर गेहूं एवं चना लगाते हैं, तो इन किसान भाइयों को सोयाबीन की शीघ्र समयावधि से पकने वाली किस्मों को लगाना चाहिए। इन किस्मों में NRC 150, JS 2433, JS 2212, JS 2303, JS 2309 इत्यादि किस्में हैं। ये किस्में 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं तथा इनकी उत्पादक क्षमता 23 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। साथ ही ऐसे किसान भाई जो वर्ष में केवल 2 फसलें लेते हैं, यानी कि सोयाबीन के बाद वे गेहूं की फसल लेते हैं, उन्हें मध्यम अथवा अधिक समयावधि वाली फसल का चुनाव वो कर सकते हैं। इन किस्मों में NRC 142 एवं JS 2172 जैसी किस्में हैं जो कि 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, ये देखा गया है कि हमारे मालवा क्षेत्र में बहुत जो सोयाबीन की पुरानी किस्में हैं ये रोग जनित हो चुकी हैं। इसके कारण हमारी उत्पादकता जो है वो कम होते जा रही है। अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान तथा अन्य शोध संस्थानों ने ऐसी किस्में विकसित कर ली है जिनकी पैदावार अधिक है तथा जिनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता है, तो इन किस्मों का चुनाव किसान भाइयों को करना चाहिए। इन किस्मों में NRC 150, NRC 142, JS 2433, JS 2309 इत्यादि किस्में हैं। किसान भाइयों, ये भी देखा गया है कि जो नवीन किस्में आती हैं वो किसान भाइयों को कैसे मिले, इनका इस जानकारी का उनको अभाव रहता है। तो मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर किसान दिवस मनाकर किसान भाइयों को 5 से 10 किलोग्राम बीज नई किस्मों का प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिससे वह ये किस्मों को लेकर अपने उनका मल्टीप्लाई कर सकें और आगे लगा सकें। अंत में मैं सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि इस स्थिति को देखते हुए वे 2 या 3 किस्मों का चुनाव करें तथा ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता हो, जिनकी उत्पादक क्षमता अधिक हो तथा वे किस्म को जो नया बीज होता है इनको अधिकृत संस्था से ही लें। इन अधिकृत संस्थाओं में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, आपके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य सरकार के कृषि विभाग होते हैं, इनसे ही आप ये बीज खरीदें। धन्यवाद
1: भाई बहनों। अब अपन ने वार्ता सुनी, जिको विषय तो सोयाबीन में किस्म हुन को चयन कैसे करा, और वार्ताकार था डॉक्टर आलोक शिव, वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। अंदर देखो भाइयों बहनों, यह बात बिल्कुल सही कही है कि आप भी जब भी बीज खरीदो तो प्रमाणित विक्रेता से या कृषि विज्ञान केंद्र से प्रमाणित बीज जरूर खरीदो, और बीज बोने से पहला बीजोपचार करनो बिल्कुल मत भूलो। फपुंद नाशक और कीटनाशक से बच अपनो जो बीज है उसके उपचारित जरूर कर जो। अने देखो, यह बात तो हमारी मानी लिया हो, अब हम भी तुम्हारी बात माना ने सुना एक और लोकगीत जी गाय है भाई शंकर लाल ढोलपुरिया और साथी ने।

0: विनोद, गीत का माध्यम से बड़ो अच्छो संदेश अपन ने जानियो। आने देखो, अभी जल संरक्षण का साथ साथ अभी अपने करनो है अपनी मृदा को संरक्षण भी। आने मृदा और जल सबको संरक्षण का सबसे सरल उपाय है वृक्षारोपण। भाई बिनोन, बरसात को मौसम आ रही है अने इना मौसम में तरह तरह का वृक्ष यदि अपना आस पास अपनी जगह के देखते हुए लगाई दांगा तो पर्यावरण संरक्षण का साथ साथ मिट्टी को कटाव भी रुकेगो, जल बचेगो और साथे साथे फल फूल और लकड़ी देने वाला पौधा उनसे अपने आर्थिक लाभ भी मिलेगो। अने देखो, वैसे तो अपना गीत कविता जो भी रहे इस सब कहीं ना कहीं संदेश तो देवेज है। तो याद करा अपन भी एक बात के भैया कविता पाठ भी अपने एक तुम्हारे सुनानो है। उन्हें कविता पाठ में कवि है विनोद कुमार चौबे, सुनो उनको यह कविता पाठ।
1: सभी किसान भाइयों के कवि मित्र व बंधु विनोद कुमार चौबे की राम राम। आज मैं आपके सामने कविता पाठ सुना रहा हूँ। हमारी पहली कविता है पर्यावरण पर आधारित है, शीर्षक है वृक्ष नीम का। कि बड़ा सुहाना हरा भरा है, नीमबोली से भरा भरा है, स्वाद है कड़वा फल है मीठा, लाभ हजारों गुणे अनूठा। के पेड़ नीम का जग उपकारी, दूर हटाता हर बीमारी, राम रहीम से कृष्ण करीम, सबका हित करता है नीम, सबका हित करता है नीम। के डॉक्टर हो या वैद्य हकीम, के डॉक्टर हो या वैद्य हकीम, सबको सबसे प्यारा नीम, पेड़ नीम का सबको भाता, सारा जग इसके गुण गाता, सारा जग इसके गुण गाता। कि नया वर्ष विक्रम का आता, कि नया वर्ष विक्रम का आता, नीम सभी को है तब भाता, घर आंगन में इसे उगाते, कि घर आंगन में इसे उगाते, इसे विदेशी भी अपनाते, इसे विदेशी भी अपनाते। कि बड़ा सुहाना हरा भरा है, नीमबोली से भरा भरा है, बड़ा सुहाना हरा भरा है। अगली पंक्ति में कहा है कि नीम के कोमल पत्ते खाते, कि नीम के पत्ते कोमल खाते, कि काली मिश्री मिर्च चबाते। नव वर्ष विक्रम संवत जब आता है नया वर्ष में, तो नीम का जो है उपयोग होता है और काली मिर्च और मिश्री का जो है प्रसाद लिया जाता है। पेड़ों का राजा है नीम, के पेड़ों का राजा है नीम, इसके चाहे धनी यतीम, इसके चाहे धनी यतीम। के जो सेवन करता है नीम, जो सेवन करता है नीम, वो दुबला भी बनता भीम, वो दुबला भी बनता भीम, वो दुबला भी बनता भीम। के अंतिम में कहा है कि दांत माजती इसकी दतुवन, के दांत माजती इसकी दतुवन, छाल से इसकी बनता मंजन, बनता मंजन। हरा भरा है, भरा भरा है, नीमबोली से भरा हुआ है, नीमबोली से भरा हुआ है। अगली काव्य रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ पर्यावरण पर आधारित। यह काव्य रचना प्रस्तुत है कि हरे भरे हैं वृक्ष हमारे, कि हरे भरे हैं वृक्ष हमारे, सबके मन को भाते हैं, पर्यावरण मिटाओ देखो, हम सबको ललचाते हैं, हम सबको ललचाते हैं। वृक्ष हमारे प्यारे साथी, पर्यावरण को दूर भगाने वाले। कि वृक्ष हमारे प्यारे साथी, ताजी हवा हमें भी देते, जीवन का आनंद इसी में, दूषित पर्यावरण मिटाते हैं, दूषित पर्यावरण मिटाते हैं। अगली पंक्ति में कहा है कि घने घने लगते हैं वृक्ष, कि घने घने लगते हैं वृक्ष, वर्षा को यह बुलाते हैं, पानी बरसा झमझमाझम, मोर बादल देख हर्षाते हैं, मोर बादल देख हर्षाते हैं। कि नदियां झरने सुंदर लगते, कि नदियां झरनी झरने सुंदर लगते, प्यारे लगते हमें बहुत सुहाने, मन हर्षित करते हैं उपवन, मन हर्षित करते हैं उपवन, आनंद की बहार बनाते हैं, हरे भरे हैं वृक्ष हमारे, सबके मन को भाते हैं, पर्यावरण मिटाओ देखो, हम सबको ललचाते हैं। अगली पंक्ति में कहा है कि नदियां गंदी मेला पानी, कि नदियां गंदी मेला पानी, पर्यावरण है भारी, कि वृक्ष देता शुद्ध हवा, जीवन सुखदायिनी, कि दूर हटाता प्रदूषण की यह महामारी, दूर हटाता प्रदूषण की यह महामारी, हरी भरी है वन बगियां, है ये सुंदर प्यारी, है ये सुंदर प्यारी। कि पानी हवा जंगल मिटा, पानी हवा जंगल मिटाते, धरा का ये प्रदूषण भगाते, पानी हवा जंगल मिटाते, हवा का यह प्रदूषण मिटाते, कि वन्य प्राणी भी इसे और भगाते, वन्य प्राणी भी इसे और भगाते, शेर चीता लोमड़ी और भालू, शेर चीता लोमड़ी और भालू, वन्य प्राणी को मैं यूँ पालूँ, कि वन्य प्राणी को मैं यूँ पालूँ, कि वृक्ष हमारे

वन की बगिया के वृक्ष हमारे वन की बगिया करते प्रकृति का और श्रृंगार, हवा जल और प्रकाश मिटाते पर्यावरण का हो भंडार, पर्यावरण का हो भंडार। अंतिम पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ कि धरती का यह कूड़ा कचरा, इस धरती का यह कूड़ा कचरा धुआं रहित जहरीला खतरा, मानो सारे शहर का प्रदूषण, वन्य प्राणी शेर निगल रहा है, वन्य प्राणी शेर निगल रहा है, वन्य प्राणी शेर निगल रहा है। मेरी अगली कविता सुना रहा हूँ, मैं आपके सामने जल संवर्धन पर आधारित कविता सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है आछो मान सरोवर। के अमृत पानी से भरे हुए है, अमृत पानी से भरे हुए है आछो मान सरोवर, के सूरज की किरणाती सजीने लागे है मंजू मनोहर, लागे है मंजू मनोहर। के एक बूंद भी मेलो पानी, एक बूंद भी मेलो पानी इमे कदी नहीं दिखे, और स्वच्छ कांच सो निर्मल पानी पीवारो मन करे, मारो पीवारो मन करे। गर्मी में पानी का जो है बहुत महत्व है। ये चंदा की चमचम किरणा से, चंदा की चमचम किरणा से चांदी सो लहरावे, ने तारा ने गोदी में लेने, तारा ने गोदी में लेने वो मंद मंद मुस्कावे, वो मंद मंद मुस्कावे। के शेल हिमालय इको रक्षक, के शेल हिमालय इको रक्षक भारत इनकी माता, के अपनी धुन में रोज अकेलो गुपचुप गुपचुप गाता, गुपचुप गुपचुप गाता। के मानसरोवर जैसो देखो, मानसरोवर देखो जैसो गांधी जी को जीवन, के शांति सत्य सद्भाव अहिंसा मानवतारो दर्पण, मानवतारो दर्पण, मानवतारो दर्पण। अगली रचना में आपने सामने मालवी कविता सुनाई रही हूँ। कविता का शीर्षक है अमलरा फूल। हो मालवा का आंगना में, मालवा का आंगना में खूब रया झूल, हो अमल का फूल खिलिया अमल का फूल। हो मालवा का आंगना में घना रया झूल, हो अमल का फूल खिलिया अमल का फूल। अगली पंक्ति में क्यों है कि हरिया भरिया हंसवा लगे अमल का खेत, के शिवना को पानी न चांद जैसी रेत, के अखिया में घूमी रया, हो अखिया में घूमी रया अमल का फूल। हो अमल का फूल प्यारा अमल का फूल, हो मालवा का आंगना में घना रया झूल, ओ खूब रया झूल अमल का फूल खिलिया अमल का फूल। अगली पंक्ति में क्यों है, हो नवी नवी लाड़ी जसो लजी लजी जावे, हो नवी नवी लाड़ी जसो लजी लजी जावे आनंद की बंसी ने बजई बजई जावे, हो सरोवर में खिलिया जसो, हो सरोवर में खिलिया जसो अमल का फूल, हो सरोवर में खिलिया जसो कमल का फूल। हो अमल का फूल खिलिया अमल का फूल, हो मालवा का आंगना में घना रया झूल, हो खूब रया झूल हो अमल का फूल खिलिया अमल का फूल। मालवी महिला जो है गांव में गरम गरम रोटी का आनंद अमल की साग के साथ किस प्रकार लेती है, कि ऊनी ऊनी रोटी ने अमल को साग, हो ऊनी ऊनी रोटी ने अमल को साग, के मालवा का रेवा लाएवा मोटो भाग, के कारा कारा मोती से निकले सोना की धूल अमल का फूल खिलिया अमल का फूल। हो मालवा का आंगना में घना रया झूल, घना रया खुई फूल अमल का फूल खिलिया अमल का फूल। के सीरो भरियो वाट कौन टपकण लागो घी, सीरो भरियो वाट कौन टपकण लागो घी, के दाखा को राय तोन जी मुम्हारा पी, के पाची पकवान वने, हो पाची पकवान वने बरती रेवे चूल, हो अमल का फूल खिलिया अमल का फूल। अब खेतों में भुट्टे और सभी उमियां लगती है, तो ये पंक्तियां प्रस्तुत है।

के भुट्टो भैया के वाला जो भूमि भाई सुन के अमल है कार सोनो ई में घना गुण के मीठा तका के मीठा तीखा असा जसा आमने बबूल हो अमल का फूल खिलिया अमल का फूल हो रंग रंगीला घना रूपारा फूल हो मालवा का आंगना में घना रया झूल ओ खूब खिलिया फूल अमल का फूल खिलिया अमल का फूल के मालवा की धरती ने घड़ी गंभीर के डग डग पे रोटी ने पग पग पे नीर हो देवता ने मालवा ने हो देवता ने मालवा ने नहीं गया भूल के लटा लूम झूम के अमल का फूल खिलिया अमल का फूल हो मालवा का आंगना में घड़ा रया फूल हो खिली गया फूल अमल का फूल खिलिया अमल का फूल। अंतिम पंक्तियों में कहा है के मालवा ने सरग कई जा संत कबीर हो मालवा ने संत कई जा संत कबीर के बाजरा उड़ावे अठे कंकुने अबीर के मालवा की राता ने हो मालवा की राता ने सगरा करी कबूल हो अमल का फूल खिलिया अमल का फूल हो मालवा का आंगना में घड़ा रया झूल ओ खूब रया झूल अमल का फूल खिलिया अमल का फूल। अंतिम रचना में आपसे हमें सुनाई रहा हूँ साक्षरता पर आधारित नानो पढ़वाने नहीं जावे और कई कई बात वे साक्षरता पर आधारित यह कविता प्रस्तुत है। हो काकड़ वाला बालिया तू भणी लीज रे तू भणी लीज रे

कासना न की जय के भणी लिखी ने अणी जगत में दुखड़ा दूर की जय हो अक्कल की वाता ने भैया अक्षर वृक्ष से लीजे हो अक्कल की वाता ने भैया अक्षर वृक्ष से लीजे कलश यात्रा में जय ने तू भैया भर भर धो बा।

भणी लीजरे के छोटा मोटा नाना नानी शाला भणवा जाजो। ओ छोटा मोटा नाना नानी शाला भणवा जाजो के गुरु जी से मिलने तम तो नाम लिखणो जानो। के मलक किताबा आईगी रे हो मलक किताबा आईगी भैया अक्षर अक्षर गाजो। सरकारी वाताने थे सगरा हिलमिल हिलमिल गाजो। ओ काकड़वारा बालिया तू भणी लीज रे तू भणी लीज रे तू लिखी लीज रे। अंतिम के दीवारा पे भणनो लिखनो मदरसा में जानो के गुरु जी की बाताने सुन रोज रोज गाजो। के प्रौढ़ शिक्षा शाला में जईने के ज्ञान को दीप जलाजो। के पंचायत में बैठने भैया सब

0: रे, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भाई बहनों, विनोद कुमार चौबे को गाए वो कविता पाठ अपन ने सुनियो। अने देखो आ भई रही है बारिश को मौसम, अने ना बारिश का मौसम में पशुओं के संक्रमक बीमारियों को खतरों कुछ बढ़ी जावे, अने पशुओं के सुरक्षित रखने का लिए बरसात से पहला ज इना जून का महीना में अपने जो टीकाकरण है पशु को, जैसे गलघोटू, लंगड़ा बुखार और खुर पका, मुँह पका सब रोगों से बचाने का लिए टीकाकरण जरूर करवाना है। और यह टीकाकरण अपना आसपास का पशु चिकित्सालय में बिल्कुल मुफ्त हो तो देर की नहीं बात की। अब समय कम है, अपना पशु उनको टीकाकरण जरूर करवा लीजो। आना देर अब और कोई बात की भी नहीं करा, आने सुनी ला एक और लोकगीत जी के गाय बेन स्वाति उखले ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी इंदौर है। प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया। इस कार्यक्रम के साथ मैं हाजिर हूं आपका दोस्त राजेश जैन। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं हसीना मान जाएगी। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में अख्तर रोमानी ने इसे लिखा है। दिल के धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया।

अपनापन, ये है फिल्म का नाम। आवाज़ लता मंगेशकर की और मोहम्मद रफ़ी की। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अर्पण। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का गाया गीत सुनी, बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

निशान। इस फिल्म के लिए आशा भोसले किशोर कुमार का गाया गीत सुनी। गुलशन बावरा ने लिखा है, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया है।

आरजू। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर का गाया गीत सुनी। हंसा जयपुरी ने इस गीत को लिखा है।

0: इस गीत के साथ ही दिल ने फिर याद किया। ये कार्यक्रम समाप्त करने के अपने दोस्त राजेश जैन को अनुमति दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी इंदौर है। 8:45 हुए हैं। समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के

0: सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरण अम साकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के

किशोर कुमार और साथियों की आवाज में सुनिए प्रकाश मेहरा का लिखा गीत। धुन बनाई है बप्पी लहरी ने, फिल्म का नाम है नमक हलाल।

बुजुर्गों ने

0: अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल।
1: बाबा बाबा
0: धन्यवाद।

0: जी सुनिए तो हम आप मिले तो फिर।
1: इस गीत के साथ ही आज का चित्रगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन।

मन भवन कार्यक्रम के साथ मैं हाजिर हूं आपका दोस्त राजेश जैन। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं हलाकू फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनवाने का अनुरोध हमसे किया है बसमत जिला हिंगोली से रामचंद्र हिंगोले, सिद्धांत, टिक्कू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम इंगोले। यहीं से नामदेव राव शिंदे, पंडित राव चांदू, छोटू इंगोले, विलास शिंदे पाटिल। माटेगांव पूर्णा से शेषराव, सोनामी सीताराम, वैष्णवी सुवर्णा, वेणुताई और शुभम। बसमत हिंगोली से पार्वती सखाराम, दीपाली राजू, रोहित, सोनू और मोनू। चांदूर बिस्वा से इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है नारायण भाऊ, विठल राव खर्चे, ललिता, परी, संजना, गणेश, कार्तिक, ब्रोनो, उषा, सोरना, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी। शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, रमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रीजा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और इनके बहुत सारे दोस्त। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे। जसपुर उत्तराखंड से रियात हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रेफाकत, रानी, तवसुम, रुखसार और मोहम्मद आसिफ।

महुआ। इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत सुनिए। इसे लिखा है कमर जलालाबादी ने, धुन बनाई है सोनिक ओमी ने, सुनना चाहा है पांठर कपड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुश्री, धनश्री बुरांडे और उनके परिवार के सभी सदस्य, बल्लारशा से सूरज जी, प्राची, एकलव्य और इनके बहुत से दोस्त, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, राजपुर से गेसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे, खंडवा से मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद हसनैन पवार, ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छेगांव से अशोक कुमार वागी, वंदना, भूपेंद्र झावर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वागी, गुमाश्ता नगर इंदौर से अनिल कवचाले, सबीहा, सुषमा, सीमा, स्मिता, पूजा, श्वेता, राखी और नील कवचाले।

रफु चक्कर। इस फिल्म के लिए शैलेंद्र सिंह और कंचन का गाया गीत सुनिए, बोल गुलशन बावरा के संगीत कल्याण जी आनंद जी का। सुनना चाहा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा, बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, मीनूराज और आदित्य श्रीमाली, मोटा का माफी से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल, सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता, चित्रा और निशा भंडारे, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

अनुरोध। इस फिल्म के लिए किशोर कुमार का गाया गीत सुनिए। आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। अनुरोध आप सबका। विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवांडकर, वैशाली गवांडकर, ध्वनि और परी गवांडकर। ग्राम लोहारी से राजेश धनजे, राहुल धनजे, विशाल, शीला और गायत्री धनजे। मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा, नीतू वैद और इनके बहुत सारे दोस्त। दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से गजानन येले, शेरी वडनेर। अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। बेमित्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी और कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांता वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, आदि, बीटी वाड़ोदे, चंद्रप्रभा वाड़ोदे और इनके परिवार के सभी सदस्य। नेवासा महाराष्ट्र से बंडू लोहार, पोपड़घट, माया, शिवांश, चंद्रकला, देवीदास और इनके बहुत से दोस्त। श्रीरामपुर भोकर से हरिभाव बिड़वे, श्रावण, अनीता बिड़वे और इनके बहुत सारे दोस्त।

इस गीत के साथ ही आज का मन भवन कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त राजेश जैन को आज्ञा दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भवन। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी इंदौर है। 10 बजा चाहते हैं अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत।
2: आकाशवाणी है आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
3: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled चानन भेल। Continuing this program, she now presents a composition titled एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कुहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। She concludes her rendition with a composition titled बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: विद दैट शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन ऑफ मैथिली फोक कॉम्पोजिशंस। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। कॉन्टिन्यूइंग द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली, नाउ वी विल लिसन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी जयपुर ओडिशा।

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अमीना हुसैन, नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बेहला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण सतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थीबा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछि जाने नाही। मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहली ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल

0: चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens, as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity, virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports.